नमस्कार श्रोताओ, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 13वीं तिथि, तदनुसार 4 जुलाई सन 2026, सवेरे के 5:56 और 41 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद जाएंगे, जहां वे भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। ये देश की शुरूआती आधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण इकाइयों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केन्द्रीय गृह सचिव और केन्द्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि E20 यानी 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले जा रहे राउंड ऑफ 32 के मैच में अर्जेंटीना और कार्बो वर्डे 3-2 गोल की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भारत केवल हमारा देश नहीं बल्कि हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे गौरव का प्रतीक है। यह वह पावन भूमि है जहां ज्ञान, तप, त्याग और बलिदान की परंपरा सदियों से प्रवाहित होती रही है। इस धरती के वीर सपूतों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता

का अमूल्य उपहार दिया है। हमारा राष्ट्र प्रेम, एकता और समर्पण की भावना का संदेश देता है। आइए मातृभूमि के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के भाव के साथ सुनते हैं एक प्रेरणादायक देशभक्ति गीत।

हर शुभ कार्य की शुरुआत मंगलमय स्मरण के साथ की जाती है। बुद्धि, विवेक और सिद्धि के दाता भगवान गणेश भक्तों के जीवन में सुख, समृद्धि और शुभता का संचार करते हैं। उनका स्मरण मन में उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई प्रार्थना जीवन के मार्ग को सरल और मंगलमय बनाती है। आइए भक्ति भाव के साथ सुनते हैं गणपति की महिमा का यह मधुर भजन।

संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त दिव्य चेतना हमें यह संदेश देती है कि जीवन में धैर्य, विश्वास और संयम बनाए रखना ही सच्ची साधना है। ईश्वर का स्मरण मन को शांति और आत्मा को शक्ति प्रदान करता है। कठिन परिस्थितियों में भी श्रद्धा और विश्वास का दीपक हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भक्ति का मार्ग मनुष्य को आत्मिक बल और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है।

जीवन में आदर्श, सत्य और कर्तव्य का महत्व हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब मन विचलित होता है तब भक्ति और विश्वास का प्रकाश हमें सही मार्ग दिखाता है। प्रभु श्री राम का जीवन मर्यादा, त्याग और धर्म के पालन का अनुपम उदाहरण है। उनका चरित्र हमें ये सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहना चाहिए।

प्रेम, मधुरता और आनंद का भाव जीवन को सुंदर बनाता है। भक्ति का मार्ग हमें यह सिखाता है कि कर्म करते हुए विश्वास बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, ज्ञान और कर्मयोग का अद्भुत संगम है। उनकी शिक्षाएं आज भी मानव जीवन को सही दिशा प्रदान करती हैं और हमें आशावादी बने रहने की प्रेरणा देती हैं।

0: आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
1: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
0: आकाशवाणी इंदौर से प्रस्तुत है आज का चिंतन, छोटी छोटी खुशियां, आलेख पूजा शर्मा का और वाचन मुकाम सिंह चौहान का।

जीवन एक निरंतर चलने वाली यात्रा है। इस यात्रा में हम सभी कुछ बड़ा पाने की इच्छा रखते हैं, एक अच्छा करियर, सम्मान, सुख सुविधाएं और सफलता। इन सब के पीछे भागते भागते हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जीवन का वास्तविक आनंद कहाँ छिपा है। हम सोचते हैं कि जब हमें वह बड़ी उपलब्धि मिलेगी तभी हम सच में खुश होंगे, लेकिन इस प्रतीक्षा में हम अपने वर्तमान के उन अनमोल पलों को अनदेखा कर देते हैं जो हमें हर दिन हर क्षण बिना किसी शर्त के मिलते रहते हैं। जरा ठहर के सोचिए, सुबह का शांत वातावरण, पक्षियों की मधुर चहचहाट, अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए कुछ पल या दिन भर की थकान के बाद मिलने वाला सुकून, ये सभी छोटी छोटी खुशियां हैं जो हमारे जीवन को अर्थ देती है। आज के आधुनिक युग में जहां जीवन तेजी से भाग रहा है, इंसान भी उसी गति से दौड़ने लगा है। सोशल मीडिया और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हम दूसरों की खुशियों से अपनी तुलना करने लगे हैं। हमें लगता है कि हमारी खुशियां कम या अधूरी हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि खुशियां कभी भी तुलना में नहीं मिलती, वे केवल अनुभव से मिलती है। एक बच्चा जब बिना किसी कारण के मुस्कुराता है तो वह हमें यह सिखाता है कि खुशी के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती। बारिश की हल्की हल्की बूंदें जब जमीन को छूती हैं तो वे हमें प्रकृति के उस सौंदर्य का अनुभव कराती हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जीवन में संतोष और कृतज्ञता का भाव ही हमें इन छोटी छोटी खुशियों का अनुभव कराता है। जब हम अपने पास जो है उसके लिए आभारी होते हैं तब हमें हर छोटी बात में आनंद दिखाई देने लगता है। यह भी सच है कि जीवन में कठिनाइयां और चुनौतियां आती रहती हैं, लेकिन यदि हम हर परिस्थिति में छोटी छोटी सकारात्मक बातों को देखना सीख लें तो कठिन समय भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। कभी कभी एक साधारण सी मुस्कान, एक स्नेह भरा शब्द या किसी की सहायता करना, ये छोटे छोटे कार्य न केवल दूसरों को खुशी देते हैं बल्कि हमारे अपने मन को भी गहरी संतुष्टि प्रदान करते हैं। हमें यह समझना होगा कि खुशी कोई बड़ी मंजिल नहीं है, बल्कि यह तो हर दिन के छोटे छोटे अनुभवों में छिपी होती है। जब हम इन अनुभवों को जीना सीख जाते हैं तभी जीवन वास्तव में सुंदर बनता है। आइए आज हम एक छोटा सा संकल्प लें कि हम जीवन की इस भागदौड़ में थोड़ी देर रुककर अपने आसपास की छोटी छोटी खुशियों को पहचानेंगे, उन्हें महसूस करेंगे और उनके लिए आभारी रहेंगे, क्योंकि अंततः जीवन बड़ी उपलब्धियों का नाम नहीं है बल्कि यह उन अनगिनत छोटे छोटे पलों का संगम है जो मिलकर इसे एक सुंदर और सार्थक यात्रा बनाते हैं।

0: ये था आज का चिंतन, छोटी छोटी खुशियाँ, आलेख पूजा शर्मा का और वाचक स्वर थे मुकाम सिंह चौहान के। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, खेती की बातें में लीजिए सुनिए बरसात के पानी का संरक्षण कैसे करें। वाचन बिंदु भाटे का है।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों हम जैसे बरसात का दिन चले रहा और इन्हीं वरसात मचे तो अपना ख कसो इन्हीं वरसात को पानी इकट्ठो करनू ये जाननू भी जरूरी छे। अगर छोटा छोटा अगर उपाय करी लेवान तो अपन इन्हीं वरसात का पानी को भी उपयोग करी सकन। हम देखी राज कि अपना गाँव में भी पक्का घर बनी गया और छे तो वहाँ पर भी बोरिंग छे,

0: वहाँ पर भी छे तो पानी खूब लगे। तो असी बखत में अपन काई करो कि जो अपनी जो छत न छे उनको पानी अपन इकट्ठो करी सकान और ओखा भी अपनी खेतीबाड़ी में अपना घर का काम को उपयोग करी सकान। अब जैसे अपन देख रहे हैं कि दिना दिन छे तो पानी की खूब कम पड़ी, रोज पानी जितो हम वापरान ओका से ज़्यादा हमको छे तो पानी लगज। और इना पानी का उपयोग कर लेना अपना घर जरूरी छे कि हम कुछ ऐसा उपाय करा जेका सी बरसात को पानी अपना घर पूरा साल भरी पूरा अपनी खेतीबाड़ी में अपना रोज का कामकाज में एका लेना। सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जो अपना घर की छत छे वहाँ से अपन पानी इकट्ठो करी सकें। वहाँ से पानी छे तो एक पाइप का द्वारा नीचे गिरे छे तो अपन इकट्ठो करी लेवा। एका लेना छे तो अपन पानी को जो टैंक छे वो सबसे पहले जो नीचे अपन ने बनाए वो खा फिल्टर करना का लेना, वो खा छानना का लेना, रेत बालू रेती पत्थर एक ही परत न बढ़े लेवा। एका से काय होएगा कि जो कचरो आई रोज वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। एका साथ एक जमीन का अंदर छे तो टंकी बनाई लेवा और पानी की टंकी में छे तो ये पानी इकट्ठो होतो रहेगा। जैसे अपना आंगन छे या बगीचो छे वहाँ पर एक जमीन का अंदर असी टंकी बनाई लेनू चाहिए। और इनी टंकी में छे तो जो अपनो बारिश को पानी आई रोज वरसात को साफ सुथरो ओखा पण इकट्ठो करी सकान। एका पण भरी कने रखी सकान। अपना रोज का काम जैसा कि कपड़ा धोणू छे बर्तन मांजनू छे अना दूसरा भी जेमा जैसा बगीचा में पानी देणू या पानी को कहीं उपयोग ही रोज तो अपन इना पानी को उपयोग करी सकान। और छे तो जो अपन ने गड्ढो बनाई रखे वरसात का पानी को इकट्ठो करना का लेना तो ओखा छे तो एक ओमा जो जल को स्तर छे वो बढ़ी जाएगा। साथ छे तो अपना घर में कभी बोरिंग होए यानी ट्यूबवेल अपन ने खोदी रखे तो वहाँ पर भी एको जल को स्तर एक बढ़ी जाए। घर का जो बाहर खुलो गड्ढो होए वहाँ पर छे तो इस तरह की अपन पत्थर बालू रेती ये सब नाखी का ना ओख भरी देवा जेका से उना गड्ढा में पानी इकट्ठो होतो रहे। छत को जो पानी आवेगा इना गड्ढा में अपन छोड़ी देवांगा तो यो गड्ढो भर ही जाएगा। साथ ही एक सोखता गड्ढो भी बनाना चाहिए। ये में छे तो अपना जमीन में जो खुली जगह छे वहाँ पर छे तो इना गड्ढा का पण बनाई देवा ने ओमा भी कंकड़ पत्थर नाखी देवा तो वहाँ पर भी पानी इकट्ठो होतो रहेगा। इस तरह जसो कि बरसात होए ना पानी असोज हो जाए और छे तो जमीन बाद में सूखी भी जाए तो एकासी अपना का अपना बोरिंग छे कुआ छे इनमें पानी की किल्लत होए पानी की कमी भी जाए। तो पानी की कमी नहीं होए एका लेना अपना का यो सोखता गड्ढो भी बनाऊनू चाहिए। अपना किसान भाई बहन के पास में खेत भी छे, खेत का पास में तालाब या छे तो असो बड़ो सो गड्ढो करनू चाहिए जेमा छे तो पानी इकट्ठो रहे। अगर तालाब बनी लो तो बहुत अच्छी बात है कि एमा बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी इकट्ठो हो जाएगा बरसात को और अपनी खेतीबाड़ी का काम में भी आवेगा। तो हमारा सभी भाई बहन इन्हीं बात को ध्यान रखेगा और छे तो इना बरसात का पानी में छे तो अपनी खेतीबाड़ी सिंचाई ये सब करी सकेगा। आज हमारा किसान भाई बहन से योज कहनू छे
1: बरसात के पानी का संरक्षण कैसे करें। खेती की बातें में अभी आपने इस विषय पर जानकारी सुनी, वाचन बिंदु भाटी का था। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। स्वर वाणी जयराम और साथियों के, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

कैलाश पर्वत पर शिवजी के विश्राम स्थल शीतल मंद सुगंधित पयार देने वाले बरगद के नीचे शिव तथा पार्वती विराजमान हैं। पार्वती श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में अपनी जिज्ञासा प्रकट करती हैं, वो कारण जानने की जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करते हैं। श्री राम के अवतार की कथा, उनका उदार बालचरित, जनक सुता से विवाह तथा ये जानने की कि किस दोष के कारण उन्हें राज्य छोड़ना पड़ा, राम के वनवास, रावण वध तथा उस प्रकरण की अन्य लीलाओं के अतिरिक्त वो ये भी जानना चाहती हैं कि वो कौन सा तत्व है जिसके अनुभूति में ऋषि मुनि निमग्न रहते हैं। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य का रहस्य क्या है? इन ढेर सारे प्रश्नों द्वारा प्रकट जिज्ञासा के अतिरिक्त वो सभी तथ्य भी जानना चाहती हैं जो अनपूछे रह गए हों। पार्वती के सहज निष्कपट प्रश्न सुन महादेव आनंद विभोर हो गए। श्री राम की प्रीति तथा भक्ति से उनका शरीर पुलकित हो गया और आंखों में प्रेमाश्रु उमड़ आए।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण दे देंगे। 7:20 पर सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा सुनहरे पल। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर भी। प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम, यह कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 9:00। जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगी

सुबह 10 बजे श्रोताओं, आपका मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन होगा सुबह 10:05 से 11 बजे तक। अब विवरण हमारे मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। सुबह 11 बजे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने का अनुप्रसारण होगा। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 12 बजे से। संग्रहालय से यह कार्यक्रम दोपहर 12:30 पर अनुप्रसारित होगा। महिला कार्यक्रम होगा दिन में 1 बजे। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 1:30 पर और सुगम संगीत का अनुप्रसारण होगा 1:45 पर। फिल्म संगीत अनुप्रसारित होगा दिन में 2 बजे और चित्रपट संगीत सुनिएगा 2:30 पर। आकाशवाणी इंदौर से सांध्यकालीन सभा का आरंभ होगा युवाणी कार्यक्रम के साथ संध्या 5 बजे। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 5:45 पर। विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत सुनिएगा संध्या 6 बजे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत योजना में स्मार्ट स्कूल विकास पर जानकारी दी जाएगी। साथ ही CM राइज सांदीपनी स्कूलों का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक समुदाय के लिए तैयार करना, इस विषय पर विपिन जैन वाइस प्रिंसिपल से संयोगिता की बातचीत हम आपको सुनवाएंगे। प्रस्तुति संयोगिता जोशी की होगी। सुगम संगीत में वाणी जयराम की गई रचनाएं हम आपको सुनवाएंगे संध्या 6:30 पर और लोक संगीत में माया देवी पटेल और साथियों के गाए लोकगीतों का आनंद लीजिएगा शाम 6:45 पर। किसान श्रोता कार्यक्रम खेती गृहस्थी होगा संध्या 7:20 पर। इस कार्यक्रम में प्रगतिशील सोयाबीन उत्पादक कृषक भेरूलाल वक्तरिया से चर्चा हम आपको सुनाएंगे। सुर्खियों में यह कार्यक्रम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित होगा रात 8 बजे। दिल ने फिर याद किया यह कार्यक्रम होगा रात 8:15 पर। श्रोताओं चित्रगीत का आनंद लीजिएगा रात 9:15 पर। राष्ट्रीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती का आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारण होगा रात्रि 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही अनुप्रसारित होगा रात्रि 10 बजे।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होंगे।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ता प्रवाचिका ऋचा झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य राजस्थान गुजरात राज्ययोः एकदिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमंत्री सर्वप्रथमं राजस्थानस्य यात्रां करिष्यति, यत्र असौ अद्य प्रातःकाले जोधपुर विमानपत्तनस्य नूतन टर्मिनल इति भवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। अशीत्यधिक चतुश्शत कोटि रूप्यकाणां इयं परियोजना वार्षिकं 20 लक्ष यात्रिणः संचालयितुं परिकल्पितमस्ति। असौ जोधपुरे संशोधित उड्डयन योजनायाः शुभारम्भोऽपि विधास्यति। अस्याः योजना

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बालोतरा जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बालोतरा के पचपदरा में भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी

कंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुआई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल तक $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज की जा सकती हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने के लिए काम कर रहे थे। जांच में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन से फंडिंग का भी पता चला है। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैयद अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मार्गरेटा ने कहा कि उन्होंने सरकार और भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। फीफा फुटबॉल विश्वकप में अर्जेंटीना ने राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर अंतिम 16 में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है।
1: कितनी सुहानी है आज की ये सुबह।
2: सच कहा, इसे और सुहाना बना रही है मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।
1: तो सुनते रहिए आकाशवाणी इंदौर।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या?
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर

0: और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: पर सुनेंगे कैसे?
0: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।

श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 10:05 से लेकर 11 बजे तक सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन का प्रसारण होगा। इस कार्यक्रम में आप हमें फोन कॉल्स कर अपने पसंद का गीत सुन सकते हैं। हमें कॉल करने के लिए हमारे नंबर नोट करें। हमारे नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर के बाहर के श्रोता STD कोड 0731 लगाकर हमें कॉल कर सकते हैं। तो श्रोताओं, हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा।

0: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात दौरे पर, दोनों राज्यों को देंगे करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से जर्मनी के प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य भेंट, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज से 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर, इंदौर में करेंगे बीएलओ कॉन्फ्रेंस को संबोधित। और प्रदेश में देर रात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादले, शहडोल और शाजापुर सहित कई जिलों में बदले गए एसपी।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के दौरे पर रहेंगे। यहां वे दोनों राज्यों को करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। वे जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे और संशोधित उड़ान योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना के तहत 100 नए एरोड्रोम विकसित किए जाएंगे। इसके बाद बालोतरा के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिस पर करीब 80,000 रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। प्रधानमंत्री जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे और राजस्थान सरकार में भर्ती हुए करीब 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। शाम को वे गुजरात के साणंद पहुंचेंगे, जहां 7,500 करोड़ रुपए की लागत से बनी सीजी सेमी OSAT सेमी कंडक्टर सुविधा का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। वे पहले इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता और सीईओ फोरम में शामिल होंगे। यात्रा के अंतिम चरण में वे न्यूजीलैंड की राजकीय यात्रा करेंगे, जो 4 दशक बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा होगी। इस दौरान वे तीनों देशों में भारतीय प्रवासी समुदाय को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण कुछ हिस्सों में कम वर्षा की स्थिति की समीक्षा बैठक की। श्री शाह ने कृषि मंत्रालय को राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर किसानों को उपयुक्त फसलों की सलाह देने के निर्देश दिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग को जल भंडारों की निगरानी और विद्युत मंत्रालय को बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से कल जर्मनी के 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंत्रालय में सौजन्य भेंट की। इस दौरान ऊर्जा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जर्मनी के सहयोग से प्रदेश एक ऊर्जा दक्ष, हरित और समृद्ध राज्य बनेगा। KfW बैंक ने बताया कि एनर्जी रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत स्मार्ट मीटर स्थापना के लिए करीब 1120 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया जा रहा है। बैंक ने फेज 2 के तहत विद्युत वितरण अधोसंरचना के लिए करीब 2200 करोड़ रुपए के वित्तीय सहयोग में भी रुचि दिखाई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज से 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। पदभार संभालने के बाद ये उनका पहला प्रदेश का दौरा है। पहले दिन वे इंदौर में लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बीएलओ कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे और 5 जिलों के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों से संवाद करेंगे। इसके बाद वे ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्य सरकार ने देर रात 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं, जिनमें शहडोल और शाजापुर के पुलिस अधीक्षक भी बदले गए हैं। संजय कुमार अग्रवाल को शहडोल और प्रियंका शुक्ला को शाजापुर का नया एसपी बनाया गया है। सागर, नर्मदापुरम और भोपाल ग्रामीण में भी नए आईजी की पदस्थापना की गई है, जिसमें मिथिलेश शुक्ला को सागर रेंज और चंद्रशेखर सोलंकी को नर्मदापुरम जोन का आईजी बनाया गया है। वहीं रुचि वर्धन मिश्रा को आईजी ग्रामीण जोन भोपाल की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने कल नई दिल्ली में बोर्ड ऑफ ट्रेड की बैठक में शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत को 2030-31 तक $2 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य तक पहुंचाने में प्रदेश अग्रणी भूमिका निभाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में देश का पहला पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। यहां 26,000 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश समझौते हो चुके हैं। मंत्री ने इंदौर में टेक्सटाइल टेस्टिंग फैसिलिटी और जबलपुर रीवा में नए ICD स्थापित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए 13 स्थानों पर करीब 12,000 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंत्रालय में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत अब तक हुए कार्यक्रमों की समीक्षा की। डॉ. यादव ने कहा कि किसानों का कल्याण राज्य सरकार का कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष घोषित किया गया है। उन्होंने सहकारी समितियों की प्रक्रियाओं का डिजिटलाइजेशन करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि ऑनलाइन किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल और ई पासबुक सुविधा का शुभारंभ जुलाई माह में ही किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के सभी जिलों में बलराम कृषि महोत्सव और संभागीय मुख्यालयों पर फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में चंदे की कथित अनियमितताओं को लेकर 2 अक्टूबर से उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या तक करीब 1000 किलोमीटर की पदयात्रा करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा पूरी तरह गैर राजनीतिक होगी, इस दौरान वे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बालाघाट जिले के किरनापुर थाना क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसे 16 ग्रामीणों को पुलिस, एसडीआरएफ और हॉकफोर्स के संयुक्त अभियान से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। मूसलाधार बारिश के कारण ग्राम भानपुर में खेत में गए ग्रामीण अचानक बढ़ते जलस्तर से चारों ओर से घिर गए थे। समय पर की गई कार्रवाई से किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। प्रदेश के 19 जिलों में आज अति भारी या भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बड़वानी और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार सहित कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि इंदौर, देवास और सीहोर में भारी बारिश का अनुमान है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। पहला मैच मैनचेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। श्रृंखला का तीसरा मैच 7 जुलाई को नॉटिंघम और अंतिम 2 मैच ब्रिस्टल और साउथहैम्पटन में खेले जाएंगे। इसके बाद भारत और इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की 1 दिवसीय श्रृंखला भी खेलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। वे जिले में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों और बैठक में सहभागिता करेंगे। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज कटनी जिले के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सेफ क्लिक अभियान 2.0 के तहत इंदौर जिले के मानपुर में पुलिस ने कल शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं मंदसौर पुलिस SP विनोद कुमार मीणा ने भी कल साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सार्थक ऐप में डॉक्टरों और स्टाफ द्वारा नियम विरुद्ध अटेंडेंस लगाने की गड़बड़ी पाए जाने पर CMHO भोपाल ने कार्रवाई की है। आगर मालवा जिले में आयोजित रोजगार मेले में 62 शिक्षित बेरोजगार युवाओं का रोजगार के लिए प्रारंभिक चयन किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत सतना जिले के 262 श्रद्धालुओं को लेकर विशेष ट्रेन कल हरिद्वार ऋषिकेश के लिए रवाना की गई। शिवपुरी जिले के कोलारस पेट सनवारा में वन विभाग द्वारा वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अवैध जुताई में प्रयुक्त 2 ट्रैक्टर और 2 कल्टीवेटर जब्त कर संबंधित पर वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया है। देवास के सिवनी अभयारण्य में आपसी संघर्ष में घायल हुए नरबाघ युवराज का भोपाल के वन विहार रेस्क्यू सेंटर में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है। जांच में बाघ के आगे के दोनों पैरों में फ्रैक्चर और पिछले बाएं पैर में गहरा घाव पाया गया है, जिस पर 6 टाके लगाए गए हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: श्रोताओ, आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुनहरे पल।

कार्यक्रम की शुरुआत इस भक्ति रचना से। जिसे हमने लिया है सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से।

सत्यम शिवम सुंदरम। जी हाँ श्रोताओं, इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग अभी आपने सुना, जिसे गाया था लता मंगेशकर और साथियों ने। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। लीजिए सुनिए यशुदास का गाया हैसियत फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: इंदिवर की शब्द रचना, बप्पी लहरी का संगीत, यशुदास को अभी आपने सुना फिल्म हैसियत में।
1: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
0: सुनहरे पल कार्यक्रम में श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं आंचल फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की और संगीत आर डी बर्मन का।

मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत, लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म आंचल में। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं

0: सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल। अगले गीत से पहले लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए। तो नई साड़ी ले ले।
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: श्रोतो, अब हम आपको सुनवाए जा रहे हैं धूल का फूल फिल्म का गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और महेंद्र कपूर ने।

आशा भोसले, महेंद्र कपूर और साथियों के युगल स्वर में अभी आपने सुना धूल का फूल फिल्म का गीत। गीत रचना साहिर लुधियानवी की थी और संगीत एन दत्ता का।

0: इंदिवर की शब्द रचना, बप्पी लहरी का संगीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और बेबी कविता को अभी आपने सुना फिल्म तोहफा में। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल।
1: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
2: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
3: आकाशवाणी इंदौर।
2: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।

0: हसरत जयपुरी की गीत रचना शंकर जयकिशन का संगीत, मोहम्मद रफ़ी को अभी आपने सुना फिल्म जी हाँ झुक गया आसमां। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुनहरे पल समाप्त करने की नीलेश जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: सुनहरे पल।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुनहरे पल, मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और एल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना से प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री जोधपुर में उन्नत उड़ान योजना का भी शुभारंभ करेंगे।

0: रिफाइनरी परियोजना एमएसएमई पैकेजिंग टेक्सटाइल ऑटो पार्ट्स व एग्री फिल्म्स जैसे उद्योगों को भी सशक्त करेगी जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर विकसित किया जाएगा जो शहर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। इस चरण से एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर संबंधित परिवहन साधनों एवं मेट्रो सुविधा का एकीकरण किया जाएगा जिससे नागरिकों को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
1: प्रधानमंत्री चूरू शार्दुलपुर और चूरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजधानी 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के लिए रवाना होंगे जहां वे सानंद में सीजी सेमी आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ये उद्घाटन भारत के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: सानंद में शुरू हो रही यह अत्याधुनिक सीजी सेमी औसर सुविधा भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के मानचित्र पर एक भरोसेमंद केंद्र के रूप में स्थापित करेगी। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद इस संयंत्र से हर साल लगभग 5 अरब सेमीकंडक्टर चिप्स का उत्पादन किया जा सकेगा। यह प्लांट डिजाइनिंग, वेफर सॉर्टिंग से लेकर फाइनल टेस्टिंग तक की पूरी श्रृंखला को एक छत के नीचे उपलब्ध कराएगा। वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के कारण दुनिया भर में बढ़ रही उच्च स्तरीय मेमोरी और स्टोरेज सॉल्यूशंस की जरूरतों को पूरा करने में भी यह प्लांट अहम भूमिका निभाएगा। इसके साथ ही यहाँ निर्मित होने वाली चिप्स की विशेष रूप से ऑटोमोटिव, दूरसंचार, 5G और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे अग्रणी क्षेत्रों को आपूर्ति की जाएगी। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गुजरात में आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने पाकिस्तान स्थित प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गुजरात और मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस ने बताया कि आरोपी पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे और गुजरात में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क स्थापित करने और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे थे। वे जैश ए मोहम्मद की विचारधारा का गुजराती में अनुवाद और प्रसार भी कर रहे थे। जांच में पता चला है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन आरोपियों को वित्तीय सहायता भी पहुंचा रहा था। आरोपियों को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और उसके प्रभाव की स्थिति की कल समीक्षा बैठक की। केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण सचिव सहित विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
3: गृहमंत्री ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में परामर्श देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। श्री शाह ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को देश के सभी जल भंडारों की निगरानी करने तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव को बिजली की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का निर्देश भी दिया। श्री शाह ने कहा कि गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल को असम और अरुणाचल प्रदेश भेजा जाए ताकि बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल कर लेगा। पहली तिमाही में ही सालाना निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% पूरा हो चुका है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि इसके लिए वस्तुओं का निर्यात $440 अरब से बढ़ाकर करीब $530 अरब और सेवाओं का निर्यात $421 अरब से बढ़ाकर करीब $470 अरब करना होगा। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तुओं के निर्यात में 15% और सेवाओं के निर्यात में लगभग 10 से 11% की वृद्धि की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में $863 अरब का अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और फ्रांस के वित्त मंत्री होलांड लेस्क्यूर ने कल फ्रांस में भारत फ्रांस आर्थिक और वित्तीय

0: मिता की अध्यक्षता की। दोनों मंत्रियों ने भारत में आर्थिक विकास के लिए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के काम की महत्ता को स्वीकार करते हुए भविष्य की परियोजनाओं की संभावनाओं का स्वागत किया। दोनों मंत्रियों ने भारत और फ्रांस के बीच आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, निवेश और व्यापार से जुड़े मामलों पर बातचीत के लिए इस आर्थिक और वित्तीय वार्ता को मुख्य मंच के तौर पर इस्तेमाल करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब तक 1,02,000 से ज्यादा गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय के अनुसार दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत लगभग 33,14,000 फॉर्म बांटे गए हैं। दावे और आपत्तियां 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच दर्ज कराए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 7 अक्टूबर को जारी की जाएगी। मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज मध्य प्रदेश के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री कुमार आज इंदौर पहुंचेंगे, जहां वे लता मंगेशकर सभागृह में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान वे इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1,500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। गुजरात राज्य चुनाव आयोग ने विभिन्न स्थानीय स्वशासन निकायों में 15 रिक्त सीटों के लिए आगामी उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इन सीटों के लिए मतदान 28 जुलाई और मतगणना 30 जुलाई को होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। वहीं जिला और तालुका पंचायत सीटों के लिए 16 जुलाई तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, जबकि नगर निगम और नगर पालिका सीटों के लिए नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 17 जुलाई है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई का 6 दिवसीय राजकीय अंतिम संस्कार तेहरान में आज से शुरू होगा। अधिकारियों को लाखों शोक संतप्त लोगों के इसमें शामिल होने की उम्मीद है। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के मोसल्ला में आयतुल्लाह अली खामेनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन, संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगेर गालिबोव, विदेश मंत्री अब्बास अराकची और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी शामिल थे। भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मामलों की राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अन्य विदेशी गणमान्य व्यक्तियों में रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, चीन के वरिष्ठ प्रतिनिधि हे वेई, अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुताकी और कई देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल थे। अंतिम संस्कार यात्रा अगले कुछ दिन तक जारी रहेगी और इस महीने की 9 तारीख को पवित्र शहर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इसके बाद 40 दिन तक सार्वजनिक शोक मनाया जाएगा। पेरू में केको फुजिमोरी को राष्ट्रपति चुनाव के 2रे दौर का विजेता घोषित किया गया है। इस महीने के अंत में पदभार ग्रहण करने पर वे पिछले 10 वर्ष में पेरू की 9वीं राष्ट्रपति बनेंगी। पेरू के चुनाव आयोग ने कल औपचारिक रूप से उनकी जीत की पुष्टि की। फुजिमोरी ने 7 जून को 2रे दौर के चुनाव में रॉबर्टो सांचेस को हराया। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि 20% एथेनॉल मिले ईंधन से गाड़ियों का माइलेज कम हो जाता है, जो कि गलत और भ्रामक है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बड़े पैमाने पर परीक्षण किए। इन परीक्षणों में गाड़ियों के ईंधन दक्षता पर कोई खास असर नहीं देखा गया। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने अमेरिका के मियामी गार्डन्स में खेले गए रोमांचक राउंड ऑफ 32 के मैच में काबो वर्डे को अतिरिक्त समय के बाद 3-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट में अपना 7वां गोल करते हुए मैच के 29वें मिनट में अर्जेंटीना को बढ़त दिलाई। मैच का फैसला 111वें मिनट में निर्णायक गोल से हुआ। प्री क्वार्टर फाइनल में अब मंगलवार को अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। इससे पहले मिस्र ने ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की थी। फिलहाल राउंड ऑफ 32 के मैच में कोलंबिया और घाना का मुकाबला अभी जारी है। और अगर बात करें क्रिकेट की, तो भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार ये मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता में नोवाक जोकोविच ने पुरुष सिंगल्स वर्ग में सर्वाधिक मैच जीतने में रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम

0: मध्य प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर आज तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनक। रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी की बैठक में 52,000 करोड़ रूपये के सौदे स्वीकृत, हिन्दुस्तान की सुर्खी है। पत्र लिखता है ड्रोन टैंक मिसाइल की खरीद को दी मंजूरी। लोकसत्ता लिखता है सेना की बढ़ेगी ताकत। हिंदुस्तान, पंजाब केसरी, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून सहित अनेक अखबारों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिक्रिया को प्रमुखता से छापा है। लोकसत्ता ने संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले का बयान दिया है, राम भक्तों को पहुंचा आघात, दोषियों को मिले सजा। सरकार द्वारा 7 चीनी ऐप हटाए जाने पर दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, अब बीच रास्ते बंद नहीं होंगे ई रिक्शा। अमर उजाला ने लिखा है बैट बीएमएस जैसे ऐप पर सख्ती, ब्लूटूथ से कमजोर पासवर्ड वाली बैटरियों को बंद कर देते थे बदमाश। राजस्थान पत्रिका ने तीन तलाक और हलाला जैसी प्रथाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 9 आरोपियों की याचिका खारिज करते हुए फटकार लगाने की खबर दी है। हलाला तीन तलाक की आड़ में नहीं दे सकते यौन शोषण की अनुमति। दैनिक भास्कर ने आजकल की भागदौड़ जिंदगी, ऑफिस का तनाव और हर वक्त काम करने की सनक से बर्नआउट हुए लोगों को लाई डाउन की सलाह दी है। घास पर चादर बिछाएं, लेट जाएं और कुछ न करें, मानसिक थकान दूर, दिल दिमाग रिचार्ज होंगे। देशबंधु ने लिखा है अमरनाथ श्राइन बोर्ड और प्रशासन के सामने खड़ी हुई नई चुनौती, बिना पंजीकरण हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का आकलन जनसत्ता की पहली खबर है, अलनीनो के ताकतवर होने से दुनिया के कई हिस्सों में लू, सूखा और भारी वर्षा का बढ़ेगा खतरा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान और गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। बालोतरा में देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर का उद्घाटन करेंगे। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया। केंद्र ने सामान्य से कम वर्षा और अलनीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में संभावित सूखे के हालात की समीक्षा की। मौसम विभाग ने गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। फीफा विश्व कप में म्यामी में हुए रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना काबो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में, मिस्र भी अंतिम 16 में पहुंचा। और मैनचेस्टर में दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला इंग्लैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch several development projects in Rajasthan and Gujarat today to inaugurate country's first greenfield integrated refinery cum petrochemical complex in Balotra. Gujarat anti-terrorist squad arrests 8 people associated with Pakistan-based terror outfit Jaish-e-Mohammed. Centre reviews below normal rainfall situation and potential drought conditions in certain areas across the country due to El Nino. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Maharashtra and Odisha for today. In FIFA World Cup, Argentina enter round of 16 after defeating Cabo Verde in a thrilling 3-2 encounter at Miami. Egypt also cruise into pre-quarterfinals. And men in blue to take on England in second T20 in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a day-long visit to Rajasthan and Gujarat today to inaugurate and lay the foundation stone of several development projects. The Prime Minister will first travel to Rajasthan, where he will inaugurate the new terminal building of Jodhpur Airport this morning. The project worth 480 crore rupees is designed to handle up to 20 lakh passengers annually. He will also launch the modified Udaan scheme in Jodhpur. Thereafter, Mr. Modi will travel to Balotra, where he will dedicate, inaugurate and lay the foundation stone for development projects worth approximately 1.06 lakh crore rupees this afternoon. These projects span multiple sectors including petrochemicals, urban transport, railways, roads,

नवरंग। जी हाँ श्रोताओ, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना महेंद्र कपूर और साथियों के युगल स्वर में, शब्द रचना भरत व्यास की और संगीत सी रामचंद्र का। श्रोताओ, बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर उम्र के व्यक्ति को गीत और संगीत बहुत अच्छा लगता है। गीत भारतीय संस्कृति की पहचान है। सामाजिक, धार्मिक कोई भी कार्यक्रम हो, शादी विवाह, तीज त्योहार या कोई विशेष अवसर, बिना गीत के सब कुछ अधूरा है। गीत भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। साहित्य और समाज के साथ ही सिनेमा में भी गीत का बड़ा ही गहरा संबंध है। जीवन के हर क्षेत्र में फिल्मी गीतों का जादू सिर चढ़कर बोलता है और गीत हमारी भावनाओं को बड़े अच्छे से व्यक्त कर देते हैं।

माशुका। जी हाँ श्रोताओं, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना सुरैया के स्वर में। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा जगत में गीतों के माध्यम से समाज के हर रीति रिवाज को, हर परंपरा को प्रस्तुत किया गया है। जहाँ पौराणिक ग्रंथों में वर्णित कथाओं का वर्णन गीतों के माध्यम से किया गया, वहीं आधुनिक समाज की मानसिकता रखने के लिए भी गीतों का उपयोग भारतीय सिनेमा जगत में बड़े ही अच्छे ढंग से किया गया। किसी को हंसाना हो, दिल की बात कहना हो, रुलाना हो या मस्करी करना हो, सब बड़े ही सुगमता से, सरलता से गीतों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता रहा है।

0: मुकेश को अभी आपने सुना अन्हाड़ी फिल्म में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत था।
1: दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे,
2: इतनी वफादारी आजकल कौन सोचता है। ये सब जीने के हैं चार दिन तो जियो जी भर के।
3: तुम्हें पता नहीं है शायद, संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंधों से HIV एड्स और यौन संक्रमण का खतरा सबसे अधिक होता है। इसीलिए वफादारी बहुत जरूरी है और कंडोम का उपयोग भी स्वस्थ यौन व्यवहार के लिए जरूरी है। उससे HIV एड्स के साथ ही यौन संक्रमणों और अनचाहे गर्भ से भी सुरक्षा मिलती है, समझे।
2: हाँ भाई समझा।
3: तो संयम, वफादारी और कंडोम अपनाओ, सुरक्षित यौन व्यवहार बनाएं। और हाँ, अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल से 1097 डायल करें।
4: मध्य प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
5: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
5: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
5: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
5: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो में जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियाँ हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की तो
1: यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

श्रोताओ, जिंदगी के हर मोड़ पर मनुष्य को साथ की जरूरत होती है। जीवन को सही तरीके से जीने के लिए मनुष्य को समाज की आवश्यकता रहती है। समाज में रहते हुए हम दूसरों से मदद ले भी लेते हैं और दूसरों का सहयोग करते भी हैं। मिलकर कार्य करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है और इसे बड़ी ही सुंदरता से, बड़ी ही सुगमता से भारतीय सिनेमा जगत ने प्रदर्शित किया है, बताया है गीतों के माध्यम से।

नया दौर। जी हाँ श्रोताओ, यही था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी, आशा भोसले और साथियों के युगल स्वर में। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की थी। श्रोताओ, भारतीय सिनेमा ने सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को बड़े ही अच्छे से गठने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अलग अलग धर्मों को, विभिन्न संस्कृतियों को और असंख्य दर्शकों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका भारतीय सिनेमा की रही है। फिल्मों के माध्यम से संगीत को लोकप्रिय बनाया गया। सितारों और भारतीय फिल्म संगीत ने दर्शकों के हृदय में स्थान पाया। भारतीय संगीत हर जगह सर्वत्र सुनने को मिल जाता है। भारतीय फिल्में जिनमें अधिकांशतः पौराणिक कथाएं, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों का चित्रण होता था, वे दर्शकों के दिल में घर कर जाती थी और वे न सिर्फ स्थानीय बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकप्रिय हुआ करती थी। साथ ही इनके गीत निरंतर कार्य करने, प्रगति पर अग्रसर होने का सार्थक संदेश भी दिया करते हैं।

शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, मन्ना डे महेंद्र कपूर और साथियों के युगल स्वर में, संगीत लक्ष्मीकांत पेरेलाल का था। और श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त करने के नीलेश जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग।
1: आकाशवाणी है प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत कार्यक्रम में आज रात हम प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध चाक्यर कूत कलाकार श्री मार्गी मधु और उनके साथ संगत की प्रस्तुति।
2: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ चाक्यर कूत बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी।
1: श्री मार्गी मधु कूडियाट्टम के अग्रणी कलाकारों में से एक है। कूडियाट्टम केरल की प्राचीन संस्कृत रंगमंच परंपरा है जिसे यूनेस्को ने मानवता की मौखिक एवं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की उत्कृष्ट कृति के रूप में मान्यता प्रदान की है। 19 मई 1966 को जन्मे मार्गी मधु पद्मश्री मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार के पुत्र तथा पद्मभूषण अमनूर माधव चाक्यार के भांजे हैं। उन्होंने अमनूर माधव चाक्यार, मूलिकुलम कोच्चुकुटन चाक्यार, पी के नारायणन नंबियार और एम माधवनुन्नी जैसे महान आचार्यों के मार्गदर्शन में पारंपरिक गुरुकुल से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में उन्होंने लगभग 3 दशकों तक अध्यापन किया तथा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान में अतिथि अध्यापक के रूप में भी सेवाएं दी। कूडियाट्टम के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें संस्कृति राष्ट्रीय पुरस्कार, केरल कलामंडलम पुरस्कार, केरल संगीत नाटक अकादमी

0: श्रोताओं, आपने अभी श्री मार्गी मधु द्वारा प्रस्तुत चाक्यार कूथ सुना। कार्यक्रम का ये भाग आकाशवाणी त्रिशूर के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था।
1: डियर लिसनर्स, यू हैव जस्ट हर्ड द चाक्यार कूथ प्रेजेंटेड बाय श्री मार्गी मधु एंड पार्टी। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी त्रिशूर।
0: क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में हम आपके लिए श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम संगीत लेकर आए हैं। श्री अमल एंटनी एक पार्श्व गायक, संगीतकार, कोरल अरेंजर तथा वोकल कोच है। वे आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार भी है। भारतीय और पाश्चात्य संगीत परंपराओं में समान रूप से दक्ष अमल एंटनी ने विश्वविद्यालय युवा महोत्सव में सुगम संगीत श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्ष 2006 में वे गंधर्व संगीतम टेलीविजन रियलिटी शो के विजेता बने तथा उन्हें राज्य स्तर पर पी सुशीला पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ पुरुष गायक के रूप में सम्मानित किया गया।
1: Continuing with the national program of regional folk and light music, we now bring you Malayalam light vocal songs presented by Shri Amal Antony. Shri Amal Antony is a playback singer, music composer, choral arranger and vocal coach. He is an A-grade artist of Akashwani. A gifted musician with accomplishments in both Indian and Western music traditions, Amal Antony was a national winner in light vocal music at the University Youth Festival in 2012. He also won the Gandharva Sangeetam television reality show in 2006 and received the Peace Sushila Award for Best Male Singer at the state level.
0: Aaj raat, Shri Amal Antony char sugam geet prastut kar rahe hai. इन चारों गीतों के बोल मलयालम के प्रसिद्ध फिल्म गीतकार एवं कवि श्री रफीक अहमद ने लिखे हैं। इन गीतों का संगीत सुप्रसिद्ध संगीतकार तथा भक्ति संगीत के क्षेत्र में विशेष रूप से ख्याति प्राप्त श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिया है।
1: टुनाइट श्री अमल एंटनी प्रेजेंट्स फोर लाइट वोकल सॉन्ग्स। द लिरिक्स ऑफ ऑल सॉन्ग्स हैव बीन रिटन बाय Shri Rafiq Ahmed, the renowned Malayalam film lyricist and poet. The music has been composed by Shri T.S. Radhakrishnan, a noted music director who is especially acclaimed in the field of devotional music.
0: Shri Krishna aur Radha ka sambandh matra laukik prem nahi hai, balki wo jeevatma aur paramatma ke divya milan ka prateek hai. Aaiye सबसे पहले राधा माधव के प्रेम का सुंदर चित्रण करने वाला एक गीत सुनते हैं।
1: द रिलेशनशिप बिटवीन श्री कृष्णा एंड राधा इज नॉट मियरली अ वर्ल्डली रोमांस। इट सिंबलाइजेस द डिवाइन यूनियन बिटवीन द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम बीइंग। लेट अस बिगिन बाय लिसनिंग टू अ सॉन्ग दैट ब्यूटिफुली पोर्ट्रेज द लव ऑफ राधा एंड माधवा।

0: प्रेम मनुष्य को सपनों, आशाओं और आनंद की दुनिया में ले जाता है। वही प्रेम वियोग उसे आत्मचिंतन और विरह वेदना की ओर ले जाता है। आइए अगले गीत में विरह की वेदना से व्याकुल एक प्रेमी हृदय की भावनाओं को सुने।
1: While love leads a person into a world of dreams, hopes and joy, the loss of love takes one into the realm of introspection and the pain of separation. In the next song, let us listen to the yearning heart of a lover grieving in the anguish of separation.

0: प्रथम प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मन में अमित स्मृतियां रिच देता है। उसमें जिज्ञासा, सपने, आशाएं और निष्कलुष भावनाएं भरी होती है। इत्र की मधुर सुगंध की तरह प्रथम प्रेम की यह सुगंध अब इस गीत के माध्यम से वातावरण में फैल रही है। आइए सुनिए।
1: First love is an experience that creates unforgettable memories in the heart. It is filled with curiosity, dreams, hopes and innocent emotions. Like the lingering fragrance of attar, the sweet scent of first love now fills the air in this song.

0: पर धारण करती है, तब फूलों से फूलों तक उड़ती तितलियां रंग बिरंगे सपनों का ताना बाना बुनती है। वे हमें भी सपने देखने और जीवन की सुंदर कल्पनाओं को अपनाने के लिए प्रेरित करती है।
1: इन द कूल फ्रेशनेस ऑफ अ वृश्चिक डॉन, एज नेचर अडॉन्स इटसेल्फ विद न्यू लाइफ, बटरफ्लाइज फ्लटरिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर वीव ड्रीम्स ऑफ मेनी कलर्स। दे इंस्पायर अस टू ड्रीम एंड टू एम्ब्रेस द ब्यूटी ऑफ इमेजिनेशन।

0: आज क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत की अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप श्री अमल एंटनी द्वारा प्रस्तुत मलयालम सुगम गीत सुन रहे थे। इन गीतों के बोल श्री रफीक अहमद ने लिखे थे तथा संगीत श्री टीएस राधाकृष्णन ने दिए थे। उनके साथ संगत कर रहे थे श्री विल्सन केएक्स कीबोर्ड, श्री बाबू वर्गीस रिथम पैड, श्री सीएनके मूर्ति बांसुरी तथा श्री सी श्री कुमार तबला। उसके साथ ही आज का क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का समापन होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी त्रिशूर केंद्र में रिकॉर्ड किया गया था। यह प्रसारण आपको आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया।
1: इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक। You were listening to a presentation of Malayalam Light Songs by Shri Amal Antony. The songs have been written by Shri Rafiq Ahmed and composed by Shri T. S. Radhakrishnan. He was accompanied by Shri Wilson K. X. on keyboard, Shri Babu Varghese on rhythm pad, Shri C. N. K. Murthy on flute, and Shri C. Shri Kumar on tabla. With this, we come to the end of today's national program of regional folk and light music. This program was recorded in the studios of Akashwani, Thrissur. This broadcast came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी देर में जिले की चिट्ठी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से प्रसारित होगी।
3: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है भिंड जिले की चिट्ठी। आलेख अनिल शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। भिंड में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा महाअभियान की शुरुआत हो गई है। कृषि विभाग ने किसानों को योजना की जानकारी देते हुए 31 जुलाई तक फसल बीमा कराने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा है कि कम बारिश की आशंका को देखते हुए बीमा किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित होगा। जिले में किसानों को प्रीमियम बीमा कवरेज और दावा प्रक्रिया की भी

अन्य विषयों की पढ़ाई के लिए योग्य शिक्षकों से 20 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। कोचिंग का संचालन सुबह और शाम दोनों समय होगा। भिंड के आईटीआई महाविद्यालय में 30 एमपी बटालियन एनसीसी द्वारा आयोजित 10 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी जिले के 350 कैडेट्स ने भाग लिया। शिविर में कैडेट्स को हथियार संचालन, निशानेबाजी, नागरिक सुरक्षा, आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। समारोह का समापन मेडल वितरण के साथ हुआ, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया। जिला पंचायत भिंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वीर सिंह चौहान ने वित्तीय अनियमितताओं के चलते बेहगांव और भिंड की ग्राम पंचायतों के 11 पदाधिकारियों पर कुल 48,81,000 रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। भिंड कलेक्टर ने मछली प्रजनन काल को देखते हुए 16 जून से 15 अगस्त तक बंद ऋतु काल घोषित किया है। इस दौरान नदियों और जलाशयों में मत्स्य खेत पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। नियम का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए तक जुर्माना या 1 वर्ष का कारावास या दोनों का प्रावधान है। मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का जिला स्तरीय आयोजन 7 अगस्त को भिंड में होगा। इसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सरकारी और निजी

मेगांव में आयोजित कुकिंग प्रतियोगिता में महिलाओं ने पारंपरिक और आधुनिक व्यंजनों का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने विजेताओं को सम्मानित किया। उन्होंने महिलाओं के हुनर को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर दिया और सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई। मंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं के आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा मेगांव के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विद्यार्थियों को मुफ्त साइकिल और मेधावी छात्र छात्राओं को ई स्कूटी वितरित की गई। ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि इससे दूर दराज के छात्रों को स्कूल आने जाने में सुविधा होगी। उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। प्रदेश सरकार की एमएसएमई प्रोत्साहन योजना छोटे उद्यमियों की सफलता की कहानियां कर रही है। घिरोंगी इंफ्रा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के संचालक प्रमोद गुर्जर ने बताया है कि सब्सिडी की मदद से प्लांट विस्तार से उत्पादन क्षमता दोगुनी हुई है, जिससे अब लगभग 150 लोगों को स्थायी रोजगार मिल रहा है। वहीं मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में सोनू धाकड़ और पूजा धाकड़ ने सोनाधिका एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना कर काजू प्रोसेसिंग में सफलता हासिल की, जिनके तैयार उत्पाद यूएई तक निर्यात होते हैं। इस इकाई में भी प्रत्यक्ष रूप से 50 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है और एमएसएमई योजना के तहत मिले अनुदान ने उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद की है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे भिंड जिले की चिट्ठी, यह आकाशवाणी भोपाल है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। प्रस्तुत है सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन।
2: हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नीलेश जोशी का नमस्कार। श्रोताओं, हम आपको बता देते हैं हमारे फोन नंबर्स। हमारे फोन नंबर हैं 2710223 और 2710224। इंदौर के बाहर के श्रोता एसटीडी कोड 0731 लगाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से। हेलो।
3: तो
1: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार जोशी जी, कैसे हैं?
1: एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं?
3: आनंद मंगल कुशल पूर्वक। मोहम्मद यूनुस खत्री बोल रहा हूँ, शिफा कॉलोनी खंडवा से।
1: जी जी साहब, बहुत बहुत स्वागत। बताइए
3: जी,
1: कौन सा गीत सुनना?
3: रात भर से अच्छी बारिश हो रही है खंडवा में।
1: जी जी जी।
3: और मौसम बहुत अच्छा है
1: जी।
3: और आकाशवाणी परिवार से एक बार शुरू हो जाए इससे एमएच हॉटलाइन में पहला गाना की फिल्म काला बाजार
1: जी,
3: जिनके तराने लेके आई बरसात।
1: क्या बात है, क्या बात है। देखिए
3: तो मौसम भी सुहाना है, बरसात भी है।
1: हाँ,
3: दुकान खोलने जाना था लेकिन मैंने सोचा चलो लगा लें।
1: जरूर जरूर,
3: बारिश हो रही है तो बैठे बैठे कार्यक्रम ही सुने।
1: बिल्कुल साहब।
3: अब वो क्या है कि मोबाइल में बारिश में सुन भी नहीं सकता उसको ज्यादा, तो इसलिए उसको उनके चलो घर से सुन के जाएंगे।
1: बिल्कुल,
3: आज का प्रोग्राम घर से सुन के जाओ।
1: जरूर जरूर, है ना, बड़ा अच्छा लगा बात करके। और रिमझिम वर्षा का मौसम आ गया है, सब दूर हरियाली आने ही वाली है। खुशियां लेकर बारिश लेकर आइए, है ना। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का प्यारा संगीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वर में अभी आपने सुना काला बाजार फिल्म का गीत, शब्द रचना शैलेंद्र की और संगीत एस डी बर्मन का था। श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। नमस्कार।
1: हाँ जी सर, नमस्कार सर,
0: कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड उज्जैन मध्य प्रदेश से सर।
0: जी लोकेंद्र जी, आप हमारे नियमित श्रोता हैं, नियमित कॉल्स आते रहते हैं, आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर जी, अब तो ये बारिश का दौर जादू हो चुका है और हर जगह कहीं कहीं उज्जैन के आसपास और इंदौर और भारत के अन्य अन्य क्षेत्रों राज्यों में बारिश हो रही है, तो अब तो बारिश के गीत इस रेडियो पर सुनना बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अधिकतर जो अभी जो मौसम चल रहा है ना, उसमें कोई सा भी चैनल ऑन करो, किसी भी देश के भारत का रेडियो, तो वहां पर अधिकतर बारिश के ही गीत चल रहे हैं।
0: बिल्कुल, बारिश का मौसम है और मौसम के अनुरूप ही हम आपकी फरमाइश जरूर पूरी करेंगे। बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: गाना सर सुनना है ये मंजिल फिल्म का, अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन की फिल्म है
0: जी,
1: उसका गाना है रिमझिम गिरे सावन,
0: क्या बात,
1: सुलग सुलग जाए मन, भीग आज इस मौसम में लगी कैसी है लगन। ये गीत है सर।
0: जरूर, है ना, योगेश की शब्द रचना है, RD बर्मन का संगीत, और इस गीत को गाया है किशोर कुमार ने। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: श्रोता हो, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है सर
1: जी। मैं यूनिवर्सिटी डोंगरगांव मऊ से।
0: जी जी जी, बहुत स्वागत सर।
1: और आज सर एक गीतकार और एक संगीतकार दोनों की पुण्यतिथि है, लेकिन थोड़ा सा अफसोस ये है कि दोनों ने एक साथ कोई काम नहीं किया है।
0: जी
1: देखिए, पहले तो पंडित भरत व्यास जी की आज पुण्यतिथि है।
0: जी जी।
1: इनका मैं गीत सुनना चाहता हूँ, उसका नाम है नवरंग और ये एक व्यंगात्मक गीत है। नीलेश जी बोल है इसके, कवि राजा कविता के मत अपान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो।
0: जी जी जी जरूर।
1: और संगीतकार है रामलाल, जिन्होंने सहरा में और भी अच्छे अच्छी फिल्मों में बड़ा अच्छा संगीत दिया है, लेकिन अफसोस ये है कि दोनों का एक साथ कुछ काम नहीं, इसलिए थोड़ा अपन मतलब मैं उनके गीत नहीं सुन पाता हूँ, फिर कभी उनको याद करेंगे, लेकिन मेरी तरफ से दोनों को श्रद्धांजलि है।
0: जरूर साहब, है ना, आकाशवाणी परिवार की ओर से भी हम सादर नमन करते हैं। और आपकी पहली फरमाइश जो नवरंग फिल्म की है ना, भरत व्यास और साथियों के युगल स्वर में यह रचना हम आपको सुनवाएंगे। गीत रचना भी भरत व्यास की ही है और भरत पंडित भरत व्यास ने काफ़ी अच्छी रचनाएं लिखी है साहब, है ना
1: पितर,
0: है ना, वाकई कालजेस जी जी, बड़ा सुखद संयोग है। लीजिए सुनिए अपनी पसंद क्या ये प्यारा सा गीत।
2: अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो। शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी, कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी। भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा, दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन। इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो, धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो। अरे छोड़ो कलम चलाओ मत कविता की चाकी, घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी। अरे कितना घर में घी है कितना गरम मसाला, कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला, कितना तेल नोन मिर्ची हल्दी और धनिया, कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया। अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ, पैसे अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ, गेहूं पर हो गजल धान के शेर सुनाओ। नोन मिर्च पर चौपाई चावल पर दोहे, सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे। अरे कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली। कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली, झन झन करती कहो रुबाई पैसे वाली।
3: अच्छा,
2: शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है। शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है, कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है।
3: अच्छा,
2: मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है, पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है। इसीलिए कहता हूँ मत किससे सर फोड़ो, धंधे की कुछ

0: श्रुतः भरत व्यास की रचना और भरत व्यास और साथियों के स्वर में अभी आपने नवरंग फिल्म की यह रचना सुनी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी इंदौर से सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। हेलो हेलो
1: हेलो नमस्कार
0: जी। नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं।
1: हाँ, मैं श्रीपाद जाखड़े बोल रहा हूँ, पुणे महाराष्ट्र से।
0: जी जाखड़े साहब, बहुत बहुत स्वागत।
1: धन्यवाद। हाँ जी,
0: कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: किशोर कुमार की आवाज में मुझे घर फिल्म का गाना सुनना है।
0: जी, घर फिल्म का। जी,
1: रात है ख्वाब की।
0: जी, फिर वही रात है, रात है ख्वाब। जी, महाराष्ट्र में मौसम कैसा है?
1: वहाँ तो बहुत बारिश हो रही है सर, मूसलाधार बारिश हो रही है, तीन चार रोज से मान लो झड़ी लगी हुई है यहाँ तो।
0: है ना, बारिश का इंतजार हम सब कर रहे थे और बड़े धूमधाम से बारिश आई। बस मध्य प्रदेश में भी, हाँ, हम लोग भी दो तीन दिनों से बड़ा आनंद ले रहे हैं, तो बारिश का आनंद आप भी लें और सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इस समय आप हैं हमारे साथ।
1: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
2: श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। हेलो हेलो।
3: हाँ भैया नमस्ते।
2: जी नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अपना नाम बताएं।
3: जी भैया, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
2: जी योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे।
3: गाना आप हमें सुनवा देंगे, फिल्म है मोहब्बतें।
2: जी।
3: और गीत के बोल है, पैरों में बंधन है पायल ने मचाया तो।
2: क्या बात है। देखिए, अभी तक जब से कार्यक्रम शुरू हुआ आज का, सभी पुराने गीत ही हमने सुना है श्रोताओं की पसंद पर, है ना। ये थोड़ा सा नया गीत आपने पसंद किया है, क्या करते हैं आप?
3: इसका गाना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है भैया।
2: जी जी जरूर। आप क्या करते हैं?
3: खेती बाड़ी का हमारा काम है भैया, अभी 2-3 पहले ही तो धान की बुआई शुरू किए है।
2: अच्छा, तो बारिश कैसी हुई आपके क्षेत्र में?
3: बारिश अभी मात्र 2 ही दिन हुआ है भैया, उसके पहले तो सूखे जैसी स्थिति।
2: नहीं नहीं, हाँ बारिश अब आ गई है, मानसून का आगमन हो गया है, है ना। तो रिमझिम बारिश खूब बरसे आपके यहाँ, आपकी फसल काफी अच्छी रहे। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। हेलो, नमस्कार। कार्यक्रम MH हॉटलाइन में बहुत बहुत स्वागत है
1: जी। सर
0: अपना नाम बताएं।
1: जी मेरा नाम दिलीप यादव है।
0: जी दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं आगर मालवा के गांव बापचा से बात कर रहा हूं सर। मेरे पापा सुनते हैं रेडियो, वो आपके रेगुलर श्रोता है, भोले सिंह यादव नाम है उनका।
0: जी जी, चलिए।
1: उनका फोन लगता रहता है
0: जी, और आज आपका भी फोन लगा, आपसे ही बात कर
1: जी
0: हो रही है ना। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: वो गाना सुनवा दीजिए, लगी सावन की फिर वो झड़ी है।
0: जी सावन की झड़ी लग गई क्या? बारिश कैसे हो रही है आपके यहाँ?
1: बारिश अभी बोनी की है सर, सोयाबीन की, बाकी सोयाबीन निकल रही है खेत से बाहर, अभी उग गई है, पानी का इंतजार कर रहे हैं। और मौसम भी अच्छी हुआ है, पानी आने जैसा
0: जरूर है ना। बिल्कुल अच्छी बारिश हो, आपकी फसल बहुत अच्छी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुरेश वाडकर, अनुपमा देश पांडे को अभी आपने सुना चांदनी फिल्म में, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत शिवहरि का। श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर पर जारी है आपका मनपसंद कार्यक्रम MH हॉटलाइन। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो
1: हेलो, नमस्ते।
0: जी, नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: ग्राम सुराना, जिला रतलाम से शेख हैदर खान बोल रहा हूँ।
0: जी साहब, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया है, खैरियत में है सब।
0: चलिए, खैरियत बनी रहे। बारिश क्या कह रही है?
1: बारिश तो 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही है सर।
0: जी, हम सब बारिश का इंतज़ार कर रहे थे और वर्षा अच्छी हो रही है, सब दूर हो रही है।
1: ये अच्छी हो रही है बारिश तो सर, मतलब सभी दूर।
0: जरूर बताइए,
1: हाँ,
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज ये अलका याग्निक की आवाज में गीत है, फिल्म का नाम है खलनायक, आजा सजन आजा। क्योंकि ये ऐसे गीत में रेडियो पे बहुत कम सुनने को मिलते हैं।
0: जी
1: हाँ, तो आज ये सुना दीजिए। हाँ
0: जरूर, आनंद बख्शी की शब्द रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, खलनायक फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अलका याग्निक और साथियों के युगल स्वर
1: हाँ
0: में। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके।

0: हेलो।
1: हाँ सर जी, नमस्कार।
0: जी नमस्कार, कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बस
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। मैं जबलपुर एमपी से अशोक सिंह बात कर रहा हूँ। सर जी कैसे हैं आप?
0: मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ सर, बस आपसे बात हो रही, और अच्छे हो गए सर, बहुत दिनों
0: जी
1: बाद
0: जी
1: आपसे
0: बहुत
1: सर
0: बहुत
1: जी बात बात
0: धन्यवाद।
1: हो रही।
0: बताइए आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सर आपके प्रोग्राम अच्छे लगते हैं, मगर फोन नहीं लगता है, आज लगा आपसे बात करूँ।
0: लेकिन नियमित कोशिश अगर की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। देखिए आज सब
1: जी
0: सफल हो
1: सर,
0: गए, है ना
1: जी सर।
0: जी।
1: फिल्म अपनापन का,
0: अपनापन फिल्म
1: मतलब
0: का कौन सा
1: पंडित
0: गीत?
1: किशोर कुमार सुरक्षा प्रदीप की आवाज से,
0: जी
1: सोम
0: जी
1: बार
0: जी
1: को हम मिले।
0: जी हम आप और हमारी बात शनिवार को हो रही है,
1: जी
0: गीत हम सोमवार का सुन रहे हैं,
1: जी सर,
0: है
1: पूरे
0: ना?
1: हफ्ते के दिन का
0: जरूर
1: गीत
0: जरूर,
1: है
0: है ना? चलिए
1: जी।
0: आप क्या करते हैं?
1: सर मैं रिटायरमेंट हूँ, 75 से रेडियो का दीवाना।
0: क्या
1: और
0: बात है, क्या
1: हमारी
0: बात है,
1: इंदौर में
0: मतलब
1: भी, इंदौर में भी
0: लगातार
1: हमारी फेमस
0: 51 वर्षों से आप रेडियो के नियमित श्रोता हैं, कैसा
1: जी।
0: लगता है?
1: बहुत अच्छा लगता है सर, अब तो बहुत कुछ बदलाव आया। पहले तो रेडियो था,
0: जी
1: सेल के द्वारा बना चलाते थे, और इधर उधर सुनाई नहीं देता था, बैंड बदलना पड़ता था। ऑल इंडिया रेडियो और सिलोनी वगैरह ज्यादा सुन पाते थे। मैं यूपी यूपी का रहने वाला हूँ, फिलहाल एक गांव से बड़ा हुआ हूँ
0: जी। लेकिन अब
1: जी।
0: मोबाइल में, है ना, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप
1: हर जगह सुन सकते हैं
0: सुन सकते हैं, है ना, कार्यक्रमों को नियमित। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का प्यारा सा गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम। बात करते हैं हमारे अगले श्रोता से। नमस्कार
1: जी। नमस्कार सर जी को,
0: कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अपना नाम बताएं, कहां से बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं अरविंद अग्रवाल, श्रीनगर जिला महुआ, उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: जी साहब, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, फिल्म का नाम रहेगा 20 साल बाद।
0: 20 साल बाद, 20 साल बाद कौन सा गीत सुनना चाहेंगे महुआ से?
1: हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग याद करेंगे।
0: जरूर, आप आकाशवाणी इंदौर को इतना प्यार करते हैं, वाकई में हमारे श्रोता आपको याद करते हैं। नियमित श्रोताएं, आपका मन भावन कार्यक्रम में भी पत्र आता है, कॉल्स तो नियमित आती हैं। मोहम्मद अजीज की आवाज़ में ये गीत है,
1: लीजिए सुनिए।

0: रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
1: श्रोताओ, आकाशवाणी इंदौर से जारी है आपका मनपसंद सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। हेलो
2: हेलो, एमएच हॉटलाइन।
1: जी, एमएच हॉटलाइन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नीलेश जी नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
2: धर्मपुरी जिला धार से शेख फहीम मोहम्मद।
1: जी बहुत बहुत स्वागत।
2: शुक्रिया सर।
1: बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
2: अनोखा दान फिल्म का गीत है, लता जी की आवाज में मत भरी है हवाएं।
1: क्या बात है, आज वाकई में हवाएं जो चल रही है वो मत भरी है।
2: बिल्कुल। और एक बात और कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सुबह सुनहरे पल प्रोग्राम में
1: जी जी
2: सुबह के अनुरूप बिल्कुल आपने गीत बजाए तो बड़ा अच्छा लगा।
1: चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत
2: बहुत अच्छी प्रस्तुति रही थी सुबह आपकी।
1: पूरा धन्यवाद। है ना, हमारा प्रयास यही रहता है कि श्रोताओं का स्वच्छ मनोरंजन हो, स्वस्थ मनोरंजन हो और मौसम के अनुरूप मनोरंजन हम करें।
2: बिल्कुल, मौसम और सुबह के अनुरूप गीत बजाए आपने।
1: जी धन्यवाद जी। है ना
2: जी,
1: हम आपको सुनवा रहे हैं अनोखा धान फिल्म का गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, योगेश की शब्द रचना है, सलील चौधरी का संगीत। लीजिए अपनी पसंद का ये गीत। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: अनोखा धान। जी हाँ, यही था फिल्म का नाम, जिसका गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में, शब्द रचना योगेश की, संगीत सलिल चौधरी का। और श्रोताओ, इस गीत के साथ ही सजीव फोनिन कार्यक्रम MH हॉटलाइन समाप्त करने की नीलेश जोशी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: हेलो MH हॉटलाइन।
0: अभी आप सुन रहे थे सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से अनुप्रसारित होगा।
2: मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स। डीटीएच के ऑडियो चैनल, साथ ही न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
3: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिन भर की दौड़ धूप से बदन टूट जाता है, जब रात आती है तो हर शिकवा रूठ जाता है। शुक्र गुजार रहिए उस मुकम्मल नींद का श्रोताओं, जिसकी आगोश में आकर हर दर्द छूट जाता है। श्रोताओं, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब कुछ न कुछ पाने की रेस में लगे हैं, पर क्या इस रेस से हम अपनी सबसे अनमोल चीज खो रहे हैं? वो अनमोल चीज है अपनी नींद। कहीं हम इसे तो नहीं खो रहे? क्या आपको पता है कि एक सुकून की नींद आपके कल को कितना बेहतर बना सकती है? आज हमारे इस फोन इन कार्यक्रम का विषय है कि नींद क्यों और कितना जरूरी है। तो फोन उठाइए, नंबर लगाइए और हमसे साझा कीजिए अपनी नींद के नुस्खे। हमारा फोन नंबर है 2660902 और भोपाल का STD कोड है 0755। तो आपके कॉल्स का हमें है इंतजार। हेलो, नमस्कार।
4: प्रणाम मैम।
3: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
4: जी मैं जय माता दी रेडियो श्रोता संघ छोटी माता मंदिर के निकट कोटा जिला जालौन उत्तर प्रदेश से अमित तिवारी बोल रहे हैं।
3: अमित जी, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारी कॉल, जी मान के चलिए कि 2 महीने के बाद आपसे व्यस्त होने के कारण हमने कॉल नहीं लगा पाई है मध्य प्रदेश भोपाल में। आज हमारी कॉल 2 महीने के बाद लगी है।
3: ये तो अच्छी बात है, 2 महीने के बाद लगी, आपकी कॉल लग गई है और आपकी हमसे बात हो रही है।
4: जी जी जी
3: जी। तो अमित जी, आज है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
4: जी जी।
3: तो आज का हमारा विषय है कि नींद क्यों जरूरी है। क्या नींद जरूरी है ये भी बताइए, नींद क्यों जरूरी है अगर आप बताएं तो।
4: बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत अच्छा आपने आज का विषय रखा है।
3: जी,
4: जैसा कि ये बताया जाता है कि नींद से अपने जो शरीर का जो मानसिक तनाव है वो दूर दूर होता है और अपनी जो सारी जो क्रियाएं चलती हैं, यदि

0: तो लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए जितनी जरूरी है उतनी तो हमें लेना ही चाहिए।
1: जी, बिल्कुल मैम,
0: अच्छा,
1: बिल्कुल।
0: एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। मान लीजिए आपको रात में जैसे कभी नींद नहीं आती, तब आप क्या करते हैं?
1: जी मैम, जैसे अगर रात में कभी नींद नहीं आती है तो
0: जी
1: दो कारण होते हैं मैम इसके, नींद का नाना। एक तो क्या होता है कि व्यक्ति जो अपनी जो दिनचर्या है वो या तो ठीक सही से, या मतलब अपने जो कुछ ऐसे विकार आ जाते हैं
0: जी
1: कि जिनके कारण से नींद नहीं आती है। तो
0: जी
1: बस हम यही करते हैं कि उतने समय केवल भगवान को ही समझना चाहिए कि भगवान तो जी कहा जाता है कि, क्योंकि पहले क्या होता था, अपनी जो माताएं होती हैं जैसे बच्चों को कोई लोरी सुनाया करती थी, थपली थप थप थप थप थपली, तो
0: जी
1: बच्चे बच्चे सो जाया करते थे। तो
0: जी
1: ऐसा ऐसा ही कुछ अगर अपन लोग जैसे नींद नहीं आ रही है तो कुछ अपन कुछ कर सकते हैं। तो शायद निंद्रा देवी कहा गया है, तो निंद्रा देवी सुन ले और नींद आ जाए।
0: कहीं आप फोन का इस्तेमाल तो नहीं करते कि पता चला नींद टूटी और फोन उठाया तो नींद और चली गई
1: बिल्कुल
0: है ना? तो इन सब चीजों से बचना चाहिए। देखिए
1: सही बात है।
0: जी, अगर हमने फोन उठाया तो नींद का गायब होना
1: जी
0: बिल्कुल
1: जी
0: तय है।
1: बिल्कुल मैम, हमारी ये मिसेज है पत्नी, वो कुछ और भी आपसे चर्चा करेंगी। आप करेंगे क्या उनसे बात?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, बात करा दीजिए।
2: हेलो दीदी, नमस्ते
0: नमस्ते, आपका नाम बताइए।
2: जी। मैं पूजा तिवारी बोल रही हूँ।
0: पूजा जी, आपने विषय तो सुन ही लिया है,
2: जी
0: तो
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्या
2: बहुत अच्छा विषय है। और नींद नींद की तो मैं सच कहूँ, नींद के जो दौरान जो मस्तिष्क होता है ना,
0: जी
2: जो दिन भर की मतलब जानकारी हो, प्रेशिश हो, या आता उसमें बदलाव भी आता है, जिसके ध्यान निर्णय लेने से क्षमता जो क्षमता होती है ना सीखने को, कौशल भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही है। दिन भर की थकान हमारी दूर हो जाती है, हमारा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य सब स्वस्थ रहते हैं हम।
2: सब स्वस्थ रहता है। और नींद के सही से तो मानसिक तनाव होते हैं, कोर्टिसोल होते हैं, मतलब नियंत्रण से करने से जैसे मूड अच्छा भी रहता है और मानसिक संतुलन भी बना रहता है दीदी।
0: बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम स्वस्थ रहने के लिए बहुत कुछ उपाय करते हैं, है ना?
2: जी
0: और शायद एक छोटी सी चीज़ है ये नींद, उसको हम कहीं दरकिनार कर देते हैं।
2: आज की जो मतलब जनरेशन है, देखो फोन चलाना या मतलब टीवी बिना देखे नींद नहीं आती, कुछ
0: जी
2: कम
0: जी
2: किसी न किसी को वो एक शौक बना लिया है, कुछ भी कह लीजिए इस
0: जी
2: तरह से। लेकिन हम लोग ही, हम ऐसा कुछ नहीं करते। हमारा योगा चलता है भाई, हमें घर घर गृहस्थी है, घर का काम है, बच्चे हैं, तो हम जो योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो इसे योगासन करते हैं, तो उसे नींद भी अच्छी आती है। और नींद भी हम 9 घंटा अच्छी आराम से लेते हैं, टाइम से भी अपना उठते हैं।
0: बहुत बढ़िया, आपने एक समय अपनी नींद पूरी करी, रात की नींद पूरी करी, सवेरे आप एकदम फ्रेश, फिर
2: हाँ
0: अपने दिन
2: बिल्कुल।
0: भर के कामकाज के लिए आप तैयार।
2: और जो मतलब वजन का निमंत्रण होता है ना, नियंत्रण, जो वजन अपना बढ़ता है उसमें भी बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि नींद से जो भूख बढ़ाने वाले हार्मोन संतुलन जाते हैं ना, पर्याप्त होने से मतलब वजन प्रबंध होता है, उससे क्या मदद मिल जाती है,
0: क्या
2: जो
0: बात
2: वजन
0: है,
2: अपना जाना हो जाता है वो भी घटता है।
0: बहुत जानकार हैं। इसीलिए गृहिणी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, घर का मंत्री कहा जाता है ना?
2: जी जी बिल्कुल दीदी। और
0: आपने
2: यही हम अपने बच्चे को भी सिखाते हैं, वो भी अपना योगा वगैरह करता है, हम दौड़ने भी जाते हैं और अच्छी नींद भी लेते हैं, और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से केयर और ख्याल रखते हैं
0: बहुत
2: दीदी।
0: बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूजा जी, देखिए, अभिभावक जैसा करते हैं वैसा ही बच्चे सीखते हैं, है ना
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: जी? तो
2: वो
0: आप लोगों को
2: संस्कार तो
0: देख,
2: सभी से आते हैं
0: जी
2: दीदी।
0: जी जी जी अपन को ही देना होता है, और वो
2: जी जी
0: देख के
2: बिल्कुल,
0: सीखते हैं। कई बार बहुत सी चीज़ें समझाने पे नहीं समझ में आती हैं, जब बच्चे देखते हैं तो वो समझ जाते हैं, और आप लोगों को
2: अगर
0: देखते हैं तो
2: बच्चों को बदलाव लाना है ना, तो बड़ों को पहले समझदार इतना बनना चाहिए कि पहले खुद को बदलो।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत
2: हम
0: सही बात
2: बदले
0: कही
2: हैं तो
0: आपने।
2: हमारे बच्चे खुद संस्कार देखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं।
0: जी, आपने हमसे
2: जी
0: बात की, बहुत अच्छा लगा पूजा जी और अमित जी।
2: जी बिल्कुल दीदी, आपसे मैं बहुत खुशी हूँ, बहुत अच्छी आपकी आवाज है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
0: थैंक यू, थैंक यू,
1: धन्यवाद मैम, नमस्कार,
0: नमस्ते नमस्ते।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: आपका नाम?
0: मैं आकांक्षा बोल रही हूँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं विजय पांडे।
0: विजय पांडे जी, कहाँ से बोल रहे हैं?

0: जी बलरामपुर से मैं दो लाइन कहना चाहूँगा।
1: जी बिल्कुल कहिए।
0: जब मौसम बहार होता है, हर फूल खिलता है, खिल जाता है चमन मेरे दिल का जब आपका प्यार मिलता है। आदरणीय आकांक्षा साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार।
1: नमस्ते विजय जी।
0: मैं विजय पांडे थाना पचपड़वा जनपद बलरामपुर से बोल रहा हूँ। आपका तहे दिल से शुक्रिया आपने मेरे काल को तस्लीम किया।
1: और आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में।
0: जी कुछ कहना चाहूँगा।
1: जी
0: कहा गया है कि हर रंग के फूलों में एक खासियत छुपी होती है और उसी खासियत से उन फूलों का एक अलग पहचान में शुमार हो जाता है। इसी अपने रंग की विशेषताओं में कुछ फूलों का जिक्र करना चाहता हूँ।
1: जी
0: कहा गया है सुर्ख रंग का फूल मोहब्बत की अलामत जाहिर करता है, जर्द रंग का फूल नफरत की अलामत जाहिर करता है, नीले रंग का फूल एक सच्चे दोस्त की अलामत जाहिर करता है, सफेद रंग का फूल पाकीजगी की अलामत जाहिर करता है, गुलाबी रंग का फूल मुस्कुराहट की अलामत जाहिर करता है।
1: बहुत बढ़िया जी। तो अब आपने इन सारे फूलों के रंगों की बात हमसे कर दी, अब आप हमारी बात पे अपनी बात कहिए। आज हमारा विषय है कि नींद क्यों जरूरी है, कितनी जरूरी है, आप अपने विचार बताएं।
0: ये जरूरी है कि जब सुबह से शाम तक हम लोग मेहनत करते हैं
1: जी,
0: तो एक रात में एक अच्छी नींद लेना जरूरी होता है। स्वास्थ्य के लिए ये बहुत अच्छी वरदान साबित हुआ है
1: जी,
0: और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी होता है नींद।
1: जी बिल्कुल,
0: हर इंसान को कम से कम 6 घंटे की नींद लेनी चाहिए।
1: जी सही कहा आपने। अच्छा आप बताएं कि अगर रात में नींद टूटती है तो आप क्या करते हैं, कभी टूटती है आपकी नींद रात में?
0: हाँ जी टूटती है, टूटती है तो ऐसा है कि उन किसी एकाग्रचित होकर
1: जी
0: किसी के बारे में किसी अच्छी बातों को अगर सोचा जाए
1: जी
0: तो नींद आ जाएगी। और जैसे नींद भी नहीं आती है तो हमारे पास रेडियो है या कोई गाने हम सुन रहे होते हैं, अच्छी गाने जो पुरानी फिल्मी गाने हैं, तो उसको थोड़ा सुनकर सुकून मिलता है और अच्छी नींद भी आती है।
1: बिल्कुल, देखिए नींद बहुत जरूरी है क्योंकि अगर नींद हम नहीं लेंगे तो उसकी कमी के कारण दूसरे दिन चिड़चिड़ापन, टेंशन, एंजाइटी भी बढ़ती है
0: जी,
1: है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा शरीर, हम खुद, हमारा मन प्रभावित होता है, उसे बचने के लिए नींद तो बहुत जरूरी है। आपने हमसे बात की विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते, कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए।
1: जी मैम, मैं सचिन बात कर रहा हूँ, जिला संभल ग्राम सिरसा से।
0: सचिन जी, कैसे हैं आप?
1: मैम हम अच्छे हैं, आप बताइए कि आप कैसी हैं और आकाशवाणी मध्य प्रदेश में सभी लोग कैसे हैं।
0: सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हमारा विषय है कि नींद हमारे लिए क्यों जरूरी है, और अच्छी नींद के लिए क्या आप कुछ करते हैं?
1: देखिए क्या होता है कि आजकल मोबाइल का समय है, तो तब तक नींद नहीं आती, मतलब ऐसी एक वो बन गई है आदत कि
0: जी
1: जब जब हम लेटते हैं काम के समय तो मोबाइल को लेकर ही हम बिस्तर पर अपने लेट जाते हैं।
0: जो बहुत गलत बात है,
1: जी,
0: क्योंकि अगर हम मोबाइल को लेके सोते हैं तो आप देखिए, स्क्रॉल करते करते आपका कितना समय बीत जाता है आपको खुद पता नहीं चलता। और फिर अगर आप मोबाइल देख रहे हैं तो समय स्वाभाविक है, बहुत देर हो जाएगी आपको, सोते सोते आपको लेट होगा, सुबेरे उठना है जल्दी,
1: जी,
0: तो
1: तो
0: फिर
1: फिर उसका प्रभाव हमें दिन में देखने को मिलता है
0: बिल्कुल दिन में देखने
1: ना।
0: मिलेगा। मन चिड़चिड़ा होगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, टेंशन रहेगी, नींद नींद भी आएगी। रात में पूरी नहीं होगी तो दिन में तो नींद आएगी, फिर आपका काम प्रभावित होगा।
1: बिल्कुल, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। काम
0: जी
1: के समय अपना एक समय निर्धारित करना चाहिए कि थोड़ा एक लिमिट होनी चाहिए मोबाइल देखने की। सोने से कुछ समय पहले से ही अपना मोबाइल बंद कर देना चाहिए।
0: जी देखिए, नींद सिर्फ आराम नहीं होता, बल्कि वो हमारे शरीर का रिपेयरिंग मोड होता है। उस समय हमारा शरीर भी दिन भर की थकान को दूर करता है, मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा रखता है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है उससे ना। तो नींद बहुत ज़रूरी है। हम अपने स्वस्थ रहने के लिए बहुत से उपाय करते हैं, लेकिन शायद नींद को कहीं भूल जाते हैं,
1: हाँ,
0: है ना? तो वो हमें नहीं करना है।
1: और मतलब आपने थोड़ा सोचना भी चाहिए सोते टाइम कि क्या करना है अब और कल क्या करना है, हमें क्या, हमने क्या आज किया, क्या नहीं हुआ आज, है
0: जी
1: ना।
0: जी अच्छी बातों को याद करिए, नींद भी अच्छी आएगी, है ना? कई बार हम देखिए जब लेटते हैं तो कल की
1: तो
0: प्लानिंग होने लगती है, कल हमें क्या करना है।
1: और कभी कभी यदि मोबाइल ज्यादा चला लेते हैं तो वह चलता ही छूट जाता है और हमें नींद आ जाती है, ऐसा मैंने देखा है, हमारे साथ नहीं हुआ है ऐसा।
0: जी देखिए, नींद का भी अपना समय है, कई बार आप कुछ भी करिए उसको आना है तो वो आ ही जाएगी, है ना? लेकिन हम क्यों समय अपना खराब करें मोबाइल देखने में? सोचना भी है तो अच्छी चीजें सोचें कल के लिए। कल का आप अभी से प्लानिंग कर लें कि हमें कल क्या करना है।
1: क्या करना है और
0: हाँ
1: कल क्या नहीं हुआ, तो
0: जी, आज हमारे से क्या गलती हुई, क्या अच्छा नहीं हुआ, उसको हम क्या सुधार सकते हैं, इस बारे में सोच के हम अपनी कल की नई शुरुआत के लिए आज की रात को बहुत अच्छे से गहरी नींद के साथ हमें बिताना होगा।
1: बहुत दिनों के बाद फोन लगा मैम, बहुत अच्छा लगा।
0: ऐसे ही अच्छा आपको लगता रहेगा, बस समय का ध्यान रखते हुए कुछ समय बाद आप पुनः फोन करें और हम लोगों से बात करें।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते सचिन जी। थक गई हैं आंखें, अब इन्हें आराम दीजिए, जिंदगी की उलझनों को यही विराम दीजिए, हसीन ख्वाबों का सफर शुरू होने को है, सुकून से सो जाइए और रात को सलाम दीजिए।

0: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार मैम जी, नमस्कार।
0: नमस्ते। कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और मुबारक हो मैम। बहुत दिन में मेरा भी फोन लगा। मैं कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी बोल रहा हूँ। बिल्कुल, कैसा लग रहा आपको? बहुत अच्छा कार्यक्रम लग रहा।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा हूँ मैम।
0: तो आज आपने फोन लगाया है, आज कार्यक्रम है बात आपकी, गीत हमारे।
1: जी बिल्कुल, फरमाइए आप।
0: आज हम बात कर रहे हैं कि नींद हमारे लिए कितनी जरूरी है।
1: नींद का तो स्वभाव यह है कि इसका मानसिक तनाव से रहता है मैम। जैसे आप तनाव में है
0: जी,
1: तो आपका नींद से बहुत कोसों दूर चला भगा देती होती। आज जो सबसे बड़ा मानव जो है, युवा भी है, वो चाहे वो बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग सब मोबाइल में इतने मुतमइन हो गए, मोबाइल से इतना हो गए, तल्लीन हो गए कि उसको छोड़कर अपनी नींद को कुर्बान कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही, बहुत सही बात कही है। अभी तक हमारे जितने भी श्रोता ने हमसे बात की है, सबका एक यही है कि मोबाइल हमारी नींद को हमसे दूर कर रही है।
1: बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया।
0: जी, हम मोबाइल पास रख रहे हैं और हम अपनी सेहत को अपने से दूर कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। नींद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, सभी जानते हैं, तो कम से कम उसको सही टाइम पे हमें लाना होगा, उसे आना होगा। अच्छा, आप रात में अक्सर नींद खुल जाती है तो, या नींद नहीं आती है, तब आप क्या करते हैं?
1: मैम देखो, मैं तो एक इबादतगार आदमी हूँ और रेडियो को सुनता हूँ और पूरा परिवार के साथ सुनता हूँ। मैं एक काम में दिन में श्रमिक कार्य करता हूँ। मैं ऐसी कार का काम का हमारा है,
0: जी
1: उसमें जो वर्किंग जो कार्य होता है
0: जी
1: उसमें जो हम तल्लीन होते हैं, लोगों को अच्छा कार्य करने की कोशिश करते ताकि वो शीतलता में रहे।
0: जी जी
1: इसी तनाव में हम अपना मोबाइल से मैं इतना दूर रहता हूँ और बच्चों को भी दूर रखता हूँ। तो उससे ताकि अपनी नींद समय से पहले खाने से 7 बजे हम खाना खा लेते हैं और 10 बजे आराम करने की तरह चले जाते हैं मालिक का नाम लेकर 9 बजे
0: बहुत
1: बाद।
0: बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: और उसके बाद 4:30-5 बजे हम उससे फारिग, नींद से फारिग हो जाते हैं। वो
0: जी
1: मालिक की बंदगी करते हैं, जो भी जिसके जिस धर्म से है, जो लोग लगे हुए हैं
0: जी
1: उसको अपने कार्य में तल्लीन होना चाहिए।
0: बहुत बिल्कुल सही बात कही है आपने, और हमारे श्रोता सुन रहे होंगे तो वो भी इस बात से सीख लेंगे।
1: अच्छा लगा सर, आपका विचार भी अच्छे थे, आज का सवाल भी बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत बहुत धन्यवाद
0: और आपने
1: आपको।
0: हमसे बात की, हमें भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ बने रहिए। नमस्ते।

0: हेलो नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है। कौन बोल रहा है, अपना परिचय दीजिए।
1: हेलो, मैं रूपा बासु बोल रही हूँ भोपाल से।
0: रूपा जी कैसी हैं आप?
1: बस बहुत बढ़िया, सुहाना मौसम है और आपकी आवाज सुन के और सुहाना हो जाता है।
0: वाह क्या बात है, तारीफ कर दी आपने आते ही हमारी। रूपा जी, आज कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में हमारा विषय है कि नींद हमारे लिए क्यों जरूरी है, आप कुछ कहना चाहेंगी?
1: नींद हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि दिन भर की थकान, दिन भर की उलझने, दिन भर की सारी चीजें जो पूरे दिन भर में हमारा जो शरीर चलता है, अगर थोड़े समय के लिए हमें शांति ना मिले तो अगले दिन के लिए हम तैयार कैसे होंगे। तो इसीलिए नींद बहुत जरूरी चीज है एक स्वस्थ आगे जीवन चलाने के लिए।
0: सही बात है। आप नींद आपकी पूरी हो जाती है?
1: नहीं, माँ होने की एक ये बहुत बड़ी चीज है कि हम कोशिश तो करते हैं कि नींद हमारी पूरी हो जाए। जैसे स्वास्थ्य के लिए 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, पर माँ होने के बाद शायद वो पूरी नहीं हो पाती, बट हाँ ठीक है, हम कोशिश पूरी करते हैं कि हो जाए। और सबसे बड़ी चीज नींद पूरी करना जरूरी इसीलिए भी है कि हम नींद में होंगे तो ही कुछ अपने आगे देख पाएंगे।
0: बहुत बढ़िया, क्या बात है। नींद को पूरा करने के लिए या नींद अच्छी नींद लाने के लिए क्या आप कोई उपाय करती हैं?
1: उपाय करना मतलब मुझे लगता है कि अगर हम दिन भर अपने को ज्यादा ना सोचें, ज्यादा ना किसी चीज के लिए दिमाग अपना इस्तेमाल करें और सब चीज आराम से सबके साथ पीसफुली रहें, अच्छा खाना हल्का खाना खाएं, फिर तो नींद बहुत सुकून से आती है। जब दिल भरा होता है तो नींद भी कम आती है, इसीलिए ना हम कोई तकलीफ लें ना ही किसी को दें। कोशिश करें कि शाम होते होते थोड़ा मधुर संगीत सुने जिससे आपको अपने शरीर को शांत करने की एक ऊर्जा मिले और फिर धीरे धीरे धीरे आराम से सो सके।
0: बहुत अच्छे विचार हैं आपके रूपा जी,
1: धन्यवाद।
0: अच्छा, कभी कभी जब नींद रात में खुल जाती है तो आपकी खुलती है?
1: बिल्कुल खुलती है,
0: तब क्या
1: खुलती है।
0: तब आप क्या करती हैं, कहीं मोबाइल तो नहीं उठा लेती हैं?
1: नहीं, मोबाइल के साथ ऐसा है, ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि मोबाइल एक ऐसी चीज है ना, हम आजकल यही सोचते हैं कि जैसे ही नींद खुल जाए और हम फोन देख लें तो शायद कुछ वो करे, पर मैं 11 बजे के बाद अपना मोबाइल तो पहले ही छूती नहीं हूँ। और दूसरी चीज, अगर रात को नींद खुल भी गई
0: जी,
1: उठ के थोड़ी देर बैठ के थोड़ा पानी पी के फिर से कोशिश करती हूँ। और मैं ये बहुत करती हूँ कि उल्टी गिनती गिनना, उल्टी गिनती गिनते गिनते वापस नींद आ जाती
0: है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, मोबाइल तो गलत ही है, पास आता है और बहुत कुछ दूर हो जाता है मोबाइल के आने से। मोबाइल की जगह अगर कभी नींद खुले तो श्रोताओं से यही कहना चाहेंगे कि वो किताब पढ़ें। कई बार देखिए पढ़ते पढ़ते भी नींद आ जाती है,
1: नींद आ जाती है, बिल्कुल नींद आती है। अब किताब से बड़ी चीज तो कुछ होती ही नहीं है और आप एकदम एक अपने उससे खो जाते हैं किताब के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता आपका दिमाग भी थोड़ा शांत हो जाता है तो नींद आ ही जाती है।
0: जी, किताब पढ़ें, सुकून देने वाला संगीत सुने तो नींद का आना निश्चित ही है।
1: बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया है और बहुत जरूरी चीज है हर एक के जीवन में नींद का होना, क्योंकि मैंने देखा है लोग सो नहीं पाते, नींद पूरी नहीं होती और कहीं ना कहीं अपनी उनकी मानसिक स्थिति आज बहुत खराब होती जा रही है क्योंकि वो इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में है कि नींद पूरी नहीं कर पाते
0: जी।
1: तो मैं चाहूंगी कि सब अपना अपना समय निकाले कि सुकून से रात को सो पाए।
0: धन्यवाद रूपा जी आपका फोन करने के लिए।
1: धन्यवाद, धन्यवाद आपको भी, धन्यवाद,
0: नमस्ते।

0: हेलो, नमस्ते
1: दीदी नमस्ते। अरे
0: नमस्ते। कार्यक्रम बाद आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है। किनसे हमारी बात हो रही है?
1: आपके नियमित श्रोता भागचंद्र साहू जी, राजेंद्र नगर गंजवासोना से। बहुत
0: साहू जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, कैसी हैं आप?
0: हम भी बढ़िया हैं। मौसम कैसा है वहाँ?
1: मौसम तो फिलहाल में पानी गिर रहा है गंजवासोदे में।
0: अच्छा, आपका स्वास्थ्य कैसा है?
1: बहुत बढ़िया है दीदी, हम पानीपुरी सेंटर का ठेला लगाते हैं। हम
0: अच्छा, रात में नींद अच्छे से लेते हैं या नहीं?
1: नहीं लेते हैं दीदी, बराबर लेते हैं, 8 बजे आ जाते हैं सुबह, अभी 12 बजे निकलेंगे।
0: साहू जी, आज हमारे कार्यक्रम में विषय यही है कि नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, तो आप बताएं।
1: बिल्कुल हाँ, तो दीदी हमारा ये कहना है कि नींद तो बहुत जरूरी है।
0: जी।

0: है कि नींद बगैर कुछ नहीं हो सकता, नींद अगर पूरी नहीं हो गई कैसे काम चलेगा।
1: जी
0: बहुत जरूरी है नींद, तो बहुत जरूरी है और पैसा अच्छा है।
1: हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है ना, हम स्वस्थ नहीं
0: बिल्कुल
1: रहेंगे।
0: बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही बात है, सही बात है,
1: जी स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे।
0: बिल्कुल सही बात है। हम तो दीदी ये है कि देखो हमें तो 8 घंटे की नींद हमें लेना है तो लेना है,
1: लेते हैं आप?
0: बिल्कुल बराबर 8 घंटे की नींद तो बिल्कुल लेते ही लेते हैं,
1: तो आप
0: बिल्कुल
1: अपनी नींद पूरा करें और स्वस्थ रहें, खुश
0: बिल्कुल।
1: रहें। नमस्कार, कार्यक्रम में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: हम पप्पू सिंह बोलते हैं।
0: पप्पू सिंह जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: हम बोलते हैं बारा जिला नरेनी तहसील से। जी दीदी, क्या कौन से विषय में है आज चैप्टर?
0: आज है नींद क्यों जरूरी है, आज का विषय है हमारा। नींद
1: जी,
0: हमारे लिए क्यों जरूरी है?
1: अब नींद जो है दीदी, थकान के लिए, और अगर व्यक्ति एनर्जी खर्च करता है, काम करता है, तो रिलैक्स होने के लिए भी नींद जो है लेनी पड़ती है दीदी।
0: क्या आप अपनी पूरी नींद करते हैं, लेते हैं पूरी नींद?
1: जी दीदी, जरूर लेते हैं। हम करीब 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं।
0: अच्छा, बहुत बढ़िया।
1: अगर दीदी काम हुआ तो 8 घंटे, अगर काम कम हुआ तो 6 घंटे में नींद पूरी कर लेते हैं।
0: बढ़िया, फिर दूसरे दिन तो फ्रेश रहते हैं।
1: दीदी, और कहते हैं सोना भी आराम है, आराम, क्योंकि इसको जो है काम पर भी इसकी जो है गारंटी रहती है नींद की।
0: काम पर असर पड़ता है उसका अगर नींद पूरी नहीं होती है तो।
1: और ज्यादा नींद भी लेंगे तो भी काम पर असर पड़ता है।
0: जी, और नींद का एक फायदा भी है, जब हम सोते हैं तो हमारा दिमाग
1: जी
0: जो होता है ना, वो दिन भर की यादों को सहेजता
1: जी
0: है ना, और सहेजना भी जरूरी है, और उनमें गैर जरूरी चीजें जो हैं उन्हें हमें डिलीट करते रहना होगा,
1: जी जी
0: अच्छी नींद पे फोकस करना होगा।
1: जी जी जी जो है नींद जो है

0: जरूरी है हर इंसान के लिए, लेकिन इसकी अच भी बुरी है और लिमिट भी जो है इसकी नींद की होनी चाहिए
1: जी। किसी भी चीज़ की अधिकता तो खराब होती ही है। पप्पू जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अपने कार्यक्रम में फोन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते। तो श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम से हमने जाना कि सेहत की चाबी सिर्फ अच्छे खाने या कसरत से नहीं, बल्कि एक अच्छी और गहरी नींद में भी छुपी है। तो आज रात फोन को कहें बाय बाय और अपनी नींद को कहें वेलकम। सोते रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। वे पहले इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता और सीओ फोरम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। मध्यप्रदेश सरकार अग्नि सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट पर है।

0: भोपाल में नगर निगम और अग्निशमन विभाग सुरक्षा मानकों की जांच के लिए संस्थानों का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री दुर्गादास उइके आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। वे जिले में विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों और बैठक में शामिल होंगे। राज्य सरकार ने 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। रुचि वर्धन मिश्रा को आईजी ग्रामीण जोन भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत भवन में आज से गायन पर्व की शुरुआत हो रही है। शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस पर्व में आस्था गोस्वामी और रुचिका केदार की जुगलबंदी रहेगी और प्रदेश के 19 जिलों में आज अति भारी या भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बड़वानी और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाते हैं। वो गीत आप हमें पत्रों के माध्यम से लिखकर भेजते हैं। सबसे पहले गीत हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी के स्वर में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस से। गीत लिखा हजरत जयपुरी ने, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। और इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से। श्रोता हैं नियाज मंजूरी, सरताज बानो, उबैद जुनेद, अलीना, रजिया, मुआज और आयत। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म तीसरी मंजिल से। इस गीत को सुरों से सजाया आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। गीतकार हैं मजरूह, संगीतकार आर डी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरिंगी से। श्रोता हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। अगले श्रोता प्रमीलागंज आलोट जिला रतलाम से हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति अतुल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

लता मंगेशकर के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म पड़ोसन से। गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतकार हैं आरडी बर्मन। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है गौरी नगर इंदौर से। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले। सुनते हैं आपका फरमाइशी गीत।

अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म फिजा से। इस गीत को सुरों से सजाया उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार अनु मलिक। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है गोला बाजार बक्सर से। श्रोता हैं श्रद्धानंद आर्य, अभिनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। अगले श्रोता घंटाघर चौक खंडवा से हैं संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

आशा भोसले और विनोद राठौर के स्वर में अगला गीत आप सुनेंगे फिल्म बाजीगर से। गीत लिखा जफर गोरखपुरी ने, संगीतकार हैं अनु मलिक। इस गीत के लिए फरमाइश हमें आई है बिलहरी बरखेड़ा कटनी से। श्रोता हैं संतोष सिंह ठाकुर, अवधेश कुमार दुबे, सुमेर पटेल, सुदामा सेन, बारेलाल बड़ई, फेरन यादव, मुन्ना खान एवं राम कुमार लोधी, संजयपुरी। अगले श्रोता रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया बेबी, आरजू जाजोरिया, ये पटेल नगर मलोट पंजाब से हैं। सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: एक जरूरी सूचना। डॉक्टर प्रेक्षा द्विवेदी गठिया रोग विशेषज्ञ एवं आर्थराइटिस और रूमेटॉइड।
1: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा किसान
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
2: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
3: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
2: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
3: अरे काहे का मजा।
2: क्यों, क्या हुआ?
3: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
2: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
3: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
2: ये हुई ना बात।

0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस, सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले।
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया, जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक हंसना मना है का तीसरा भाग।

0: लीजिए दोस्तों, एक बार फिर इस नई कड़ी के साथ हाजिर है आपका अपना दोस्त रजनीकांत त्रिवेदी।
1: हेलो वेटर, वेटर इधर आइए।
2: यस सर।
1: क्या है कि मुझको तो जानते हो।
2: यस, हम आपको जानता है।
1: तो क्या है कि अभी हमने जो आपके होटल में खा लिया है अपना पेट भरा, बहुत बढ़िया खाना आपका।
2: थैंक यू।
1: थोड़ा सा प्रॉब्लम यह आ गया है कि हमारे पास जो पर्स है हमारा बटुआ, वो मैं घर पे भूल के आया हूँ। तो क्या कुछ ऐसा एडजस्टमेंट क्या हो सकता है? क्या
2: हो जाएगा? नो प्रॉब्लम, आप चिंता मत करो, आप कल आके पैसा दे देना। बस आपका जो नाम है वो हम अब जो हमारा होटल का दीवार है उसमें हम आपका नाम लिख देगा, आप कल आके दे देना।
1: नाम हमारा होटल की दीवार के ऊपर लिखा रहेगा?
2: यस।
1: वेटर ये कितनी गंदी बात है, लोग देखेंगे तो हमारी कितनी इंसल्ट होगा, हमारा नाम लिखा होगा कि हम बिल पेड नहीं किया है।
2: नहीं, नो प्रॉब्लम, चिंता मत करो, आपका नाम कोई भी आदमी पढ़ने को नहीं सकता। इसलिए नहीं पढ़ने को सकता कि जहाँ पर आपका नाम लिखा होगा उसके ऊपर हम आपका कोट टांग देगा।
1: अरे गोपाल, ओ गोपाल, अरे इधर तो आ भाई।
3: हम भाऊजी, नमस्ते भाऊजी।
1: हाँ नमस्कार, नमस्कार।
3: बोलिए भाभी,
1: और ठीक है?
3: हाँ।
1: गोपाल आज तो हमको गाना नहीं सुनाओगे? तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो।
3: नहीं भाऊजी, हम गाना नहीं सुनाएंगे, क्या है थोड़ा गले का प्रॉब्लम है।
1: गले का प्रॉब्लम?
3: हाँ।
1: क्यों, गले में कुछ गड़बड़ हो गई क्या?
3: नहीं, वो गड़बड़ गले में नहीं हो गई, प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारे घर के बिल्कुल बाजू में एक पहलवान रहता है, उसने बोला है कि अगर तुमने दोबारा गाया तो हम तुम्हारा गला दबा देंगे। अरे आइए सेठ जी। नमस्कार, नमस्कार सेठ जी, आइए।
1: दुकानदार, क्या हाल चाल है?
3: कृपा है भगवान की, आपका आशीर्वाद है। ए लड़के, जरा कुर्सी लाओ बेटा, इधर यहाँ रखो कुर्सी, सेठ जी के लिए कुर्सी रखो। आइए सेठ जी, क्या बुलवाया जाए? चाय, कॉफी, कुछ नहीं, पहले आप सेवा का अवसर दीजिए। चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊं, लस्सी वगैरह, गन्ने का रस, आप जो बोले बस, आप सेवा का अवसर तो दीजिए।
1: वो तो ठीक है, वो आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, हमें तो आप पूछ रहे हैं चाय कॉफी के लिए और कोल्ड ड्रिंक के लिए और कुर्सी भी दे रहे हैं, लेकिन जब हमारा नौकर आपकी दुकान में आता है तो आप उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते, ना उससे कुर्सी में बैठने को कहते हैं, ना ही कि चाय वाय के लिए पूछते हैं। आपको मालूम नहीं कि वो मेरा नौकर है? अरे नगर सेठ की हवेली का कर्मचारी है वो।
3: मुझे मालूम है सेठ जी, वो जो आपका नौकर आता है ना, बिल्कुल मुझको मालूम। अरे नगर सेठ, आप तो पूरे पूरे देश में, पूरे इलाके में प्रसिद्ध हैं। मैं माफी चाहता हूँ, वो गलती हो गई। आज से मेरे बाप की तौबा, मेरे दादा की तौबा, कभी कोई भूल नहीं होगी सेठ जी, कतई भूल नहीं होगी। अरे आप तो नौकर की बात छोड़ो, आप अपनी बात छोड़ो, अगर आपके इलाके का, आपकी हवेली का अगर कुत्ता भी मेरी दुकान आ जाएगा तो मैं ये समझूंगा कि आप मेरी दुकान पे आए हैं। एक आकाशवाणी के अनाउंसर साहब थे, वर्षों से काम करते आ रहे थे आकाशवाणी में, उनकी बच्ची का विवाह हुआ, उन्होंने 15-20 दिन की छुट्टी ले ली, काम में लग गए। भाई स्वाभाविक है, शादी की तैयारी एक दिन की नहीं होती, उसमें महीनों लग जाते हैं, तो तैयारियां में वो अनाउंसर साहब लगे हुए थे, यहां से वहां इसको बुलाना, उसको बुलाना, ये कार्ड बांटना, वो कार्ड बांटना, ये भोजन बनवा

0: आना, यहाँ शादी की तैयारी, यहाँ पे कुछ करना, कुछ ये करना। अचानक एक दिन उनसे मिलने, यानी अनाउंसर साहब से मिलने, उनके एक मित्र पहुंचते। आगे क्या होता है देखिए।
1: अरे भाई त्रिवेदी जी, ओ भाई त्रिवेदी जी, अरे त्रिवेदी जी।
0: नमस्कार नमस्कार।
1: नमस्कार, और कैसे हैं त्रिवेदी जी?
0: ठीक है
1: ठीक है
0: जी। हाँ
1: भाई, मैं यहाँ से निकल रहा था, मैंने सोचा कि आपके यहाँ शादी ब्याह का मामला है, सो आपसे मिलता चलूं।
0: धन्यवाद।
1: और मेरे लायक कोई भी काम हो तो आप मुझे जरूर याद करें, मैं आपका कोई भी काम करने बिल्कुल तैयार हूँ।
0: धन्यवाद।
1: त्रिवेदी जी, आप लोग तो कलाकार आदमी हैं भाई। वाह, जब भी मैं आपके कार्यक्रम देखता सुनता हूँ तो बहुत ज्यादा मजा आता है। आकाशवाणी पर आपके कार्यक्रम तो सुन के मैं और हमारे सारे बच्चे और सारे लोग बड़े आनंदित होते हैं। साहब वाह, कोई भी काम हो आप जरूर याद करें।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: और सुनाइए, मेहमान वगैरह तो आना जाना चालू हो गया होगा?
0: मेहमान तो बहुत सारे आ गए हैं।
1: तो अभी आपके घर में कौन कौन आ गया है मेहमानों में
0: इस वक्त?
1: जी हाँ,
0: इस वक्त हैं बिलासपुर से बंटी, पप्पू और उनके मम्मी पापा, नया गांव से रमेश, सुरेश, दिनेश और महेश और उनके ढेर सारे पड़ोसी, बरगी नगर से हैं रसीद चाचा और कौशल्या चाची, कटनी से हैं अखिलेश कुमार, कुंवर राजेंद्र सिंह, सारिका और उनके चाचा, चाची, पापा, मम्मी, दादा और दादी। किसी सज्जन की होने वाली थी शादी, उन्होंने सोचा कि चलो भाई अपनी पत्नी के बारे में संपूर्ण जानकारी ली जाए, कितनी पढ़ी लिखी है, घर का काम जानती है कि नहीं जानती है, उसका स्वभाव कैसा है वगैरह वगैरह। इनकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वो पहुंचे कहाँ? प्राइवेट जासूस कंपनी। और पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी होने वाली पत्नी का फोटो दे दिया, उसका एड्रेस वगैरह दे दिया और जासूस कंपनी वालों को पैसे वगैरह दे दिए और कहा कि भाई आप हमारी वाइफ के बारे में पूरी जानकारी एक हफ्ते के अंदर हमको दे दीजिए। जासूस कंपनी ने एक हफ्ते के बाद उन्होंने एक बड़ी बढ़िया सी रिपोर्ट भेजी। उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ था? जिस लड़की की हमने जाँच की वो लड़की सुशील, सुंदर, गृह कार्य में दक्ष, स्वभाव में मधुरता, पढ़ी लिखी है, जिसके परिवार के अन्य लोग भी इस शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं, मगर इस बात का दुख है कि भविष्य में जिस लड़के से उसकी शादी हो रही है वह सनकी, कम पढ़ा लिखा और आधा पागल है। जैसा कि सबको मालूम है, मेरा नाम है रजनीकांत त्रिवेदी। रजनीकांत त्रिवेदी मैं हूं। पढ़ने का बड़ा शौकीन, तो मालूम हुआ कि सब बंबई में एक बड़ी बढ़िया पत्रिका छपती है। मैंने पत्र व्यवहार किया, पत्रिका आना चालू हो गई, लेकिन जो मेरा एड्रेस था उसमें वो लोग क्या लिख के भेजते थे? रजनीकांत द्विवेदी। अब एक बार हो गया, दो बार हो गया, चार बार हो गया, मेरा एक दिन हुआ दिमाग खराब कि ये लोग करते क्या हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, त्रिवेदी को बना दिया द्विवेदी। मैंने एक पत्र लिखा, उसमें लिख दिया कि श्रीमान जी, मैं विगत कई महीनों से आपका प्रत्येक माह का ग्राहक हूँ और आप मुझे पत्रिका भेजते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु आप त्रिवेदी के स्थान पर जो द्विवेदी लिखते हैं ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, हर बार आप मेरा एक वेद का नुकसान करते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप पत्रिका भेजना बंद कर दें। हफ्ते दस दिन के बाद एक चिट्ठी उनके संपादक महोदय की मेरे पास आती है, उसमें क्या लिखा है कि श्री रजनीकांत जी, हम आपसे माफी चाहते हैं, आपको पत्रिका तो खैर मिलती है, उसकी आपने तारीफ की, इसके लिए धन्यवाद, परंतु हम आपको त्रिवेदी के स्थान पर द्विवेदी लिखकर, जो कई बार आपका हमने एक वेद का नुकसान किया है, इसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं, आगे के समय में जब भी हम आपको पत्रिका लिखे डालेंगे और उसका जो पता होगा उसमें द्विवेदी त्रिवेदी की जगह अब आपको लिखा जाएगा रजनीकांत चतुर्वेदी। जल्दी खाना बनता है, अच्छा बनता है, ये सब यहां वहां की बातें सुन के एक बुजुर्ग महिला पहली बार गई कुकर खरीदने। कौन सा कुकर? जिसमें वो जल्दी खाना बनता वगैरह, जो भी कुछ अपने को क्या करना। खैर, कुकर खरीद के ले तो आई माता जी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ये सब क्या है क्या नहीं। उन्होंने उसका इस्तेमाल दूसरे दिन से चालू किया। तीसरे दिन उस कुकर को लेकर पहुंच गई दुकानदार के पास और कहने लगी,
2: जे वाला कुकर तुम्हारी जो मशीन है, जे वाली मशीन आप वापस कर लो, हमें नहीं चाहिए।
0: तो दुकानदार बोलता, क्या हो गया माता जी, ऐसी क्या परेशानी हो गई कुकर में?
2: अरे कहले तुम्हारा कुकर बहुत शैतानी है, बहुत मतलब बहुत ऊधम वाला है जय कुकर।
0: कहले कि मेरा कुकर ऊधमी है, शैतानी है, करता है, ये सब क्या बोल रहे माता जी, समझ में नहीं आया। तो माता जी ने विस्तार से बोला,
2: कहले नहीं जैसे ही हमने हमारी लड़की जो 19 साल 20 साल की है ना, उसने जैसे ही जे वाला कुकर चालू किया तो

0: थोड़ी देर के बाद तुम्हारा कुकर हमारी लड़की को देख कर सीटी बजाता है।
1: एक नए कलम घसीट, लिख बैठे उपन्यास। एक पन्ने का, दो पन्ने का नहीं, अरे पन्ने की तो गिनती छोड़िए, उसका वजन था 3 किलो 900 ग्राम। अब लिख तो दिया, अब सोचते हुए कि भाई कोई इसको सुन ले, कोई इसको सुन ले। खैर चलिए ठीक साहब, उनकी मुराद पूरी हो गई। एक दिन पहुंच गए एक मित्र उनके पास, और ये अपना उपन्यास लेके बैठ गए, कलम घसीट। 1 घंटा सुनाया 2 घंटा सुनाया 5 घंटा सुनाया। वो बेचारा जो सुनने वाला था वो आधा पागल हो गया। 8 घंटे हो गए सुनाते सुनाते, उसके बाद भी वो उपन्यास पूरा नहीं हुआ। अब क्या किया जाए? खैर जो लेखक महोदय थे मिस्टर कलम घसीट, उनने अपने दोस्त से 8 घंटे उपन्यास सुनाने के बाद पूछा, क्यों दोस्त कैसा लगा उपन्यास मेरा, तुम्हारी कुछ प्रतिक्रिया? तो उनका दोस्त बोलता है, भाई मेरे पास तो तुम्हारे उपन्यास के बारे में शब्द है नहीं, लेकिन एक बात है, सुबह सुबह तुम्हारे इलाके में एक आवाज आएगी, वो जो है आवाज इतनी बढ़िया होगी, वो जो आवाज लगाने वाला है वो होगा होगा सबसे इसका सबसे अच्छा पारखी, समझ जाना बस उस आवाज को। अरे साहब कलम घसीट बड़े ग्लैड, बहुत खुश, वो पूरी रात जागी। सुबह का 7 बज गया 8 बज गया वो पारखी के इंतजार में कि वो पारखी कौन होगा जो उनके उपन्यास को सराहेगा। अचानक सुबह 9 साढ़े 9 बजे एक आवाज आती है, रद्दी वाला 4 रुपए किलो, रद्दी वाला 4 रुपए किलो, रद्दी बेचो।
2: गोपाल तिवारी बड़े शरीफ इंसान हैं, मगर इतने भी नहीं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो ये कुछ ना समझते हो। अब देखिए, पता नहीं इन्होंने कहां क्या देख लिया, सीधे चले आए कुछ सुनाने।
3: अब जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो बहुत ही बढ़िया चीज एक ये है कि आजकल ग्रीटिंग कार्ड बहुत फैशन में है, और ग्रीटिंग कार्ड की एक घटना मैं आपको सुना रहा हूँ जिसमें शहर जबलपुर से मैंने इसको लिया है। ये देखिए साहब कि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर कैसे मेल खाता है और उसमें से क्या नई ताशीर पैदा होती है वो देखिएगा। दो लड़कियां आपस में बेडरूम में बैठी हैं, दोनों सहेलियां हैं और आपस में चर्चा कर रही हैं। पहली ने दूसरी से कहा,
4: ए अपन को सदर चलना है। क्यों सदर गए के लिए? ए अपन सदर में क्या ग्रीटिंग मिलती है, यू नो हर ओकेजन की ग्रीटिंग। तो घर में जैसे वो है अपन को थैंक्स है, वैलेंटाइन है, न्यू ईयर है, मेंशन नॉट है, इस तरह मतलब हर ओकेजन की ग्रीटिंग। अच्छा हाँ सच्ची में, तो फिर अपन चलेंगे 12th को चलेंगे, अपन 12th को चलेंगे, जो 14th को जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये बात चल ही रही थी कि घर में जो झाड़ू पोछा लगाने वाली बाई है उसने सुना, और जैसे ही उसने सुना कि हर ओकेजन की ग्रीटिंग मिलती है और ओकेजन शब्द की मीनिंग उसको नहीं मालूम थी, उसने पूछा,
5: बेटा जी ओकेजन क्या होता है? इसको क्या समझा यार ओकेजन, तुम ऐसा समझ लो भाई कि मतलब ओकेजन मतलब त्योहार, जैसे दिवाली है, दशहरा है, नया साल है, इसका मतलब ओकेजन। अच्छा ओकेजन मतलब त्योहार। अब साहब उसने एक और काम वाली बाई को तय किया, और दोनों काम वाली बाई जो हैं आपस में बातचीत करके मालकिन से एडवांस ले लिए, और दोनों ने ग्रीटिंग लेने की विचार किया, और शायद हनुमान तालिया उस तरफ से कहीं से चली होंगी, एक अंदाज है मेरा, और वहाँ से रिक्शा उन्होंने किया, रिक्शा करने का ढंग, और फिर उसके बाद में वहाँ से जब वो चली तो रास्ते में शास्त्री ब्रिज जाता है जिसमें चढ़ैया है, और उसके बाद फिर सदर, शिवाजी मैदान, वहाँ फिर ग्रीटिंग कार्ड की दुकान, बाजू में कॉफ़ी हाउस, ये सिचुएशन है। देखिए साहब मामला कैसे हुआ, उसने रिक्शा तय किया पहली काम वाली बाई ने दूसरी काम वाली बाई के साथ। रिक्शे चले आ रहे हैं और रिक्शे वालों का अपना एक स्टाइल होता है, और देखिए कैसे चले आ रहे हैं। पहला रिक्शे वाला रिक्शा रोकियो भैया जरा, तो रोकियो। हाँ बहन जी कहाँ जाने हैं? सदर चलने। कितने पैसे ले हो? 40 रुपये। 40 ले हैं यार, ये ऐसी लूटा मारी मचा रहे तो मतलब 5-5 में गए 4। चलो दूसरा, तीसरा, चौथा, कई रिक्शे वाले चले गए, मामला कहीं तय नहीं हो रहा था। दूसरी वाली ने कहा,
6: ऐसे रिक्शा नहीं तय होता, रिक्शा तय करना बहुत बड़ी टेक्निक का काम है, हमसे समझ लो सीख लो, बहुत काम आएगा, और जितनी हमारी मतलब बहनें श्रोता हैं जो इस सुन रही हैं इस समय ये कार्यक्रम, वो भी बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि रिक्शा करना सबसे ज़्यादा महिलाओं को पड़ता है, मेल मेंबर तो अपना गाड़ियों से चले जाते हैं, हम लोगों को रिक्शा करने की टेक्निक आना बहुत ज़रूरी है, खासकर रिक्शे वालों को देख कर, उनकी पहले स्टडी करना चाहिए कैसे हैं कैसे नहीं, फिर कैसे तय करना, ये देखिए मैं बता रही हूँ, देखिए आने दीजिए कोई रिक्शा। और देखिए साहब उतने ही में एक रिक्शे वाला चला आ रहा है, और कम से कम पीजी होगा पोस्ट ग्रेजुएट, और

और आके जैसी उसने दरवाजा खोला और अंदर गई। जैसे ही वो अंदर गई तो उसने कहा हाँ ऐसे खुलता दरवाजा, ढकेलना पड़ता और ढकेले। दोनों ने ढकेला और अंदर। अब शॉपकीपर से बोली भैया एक्यूज मी। तो शॉपकीपर फॉर्मूला व्हाट कैन आई डू फॉर यू। फिर वो अंग्रेज भाई हम अंग्रेजी से बड़े परेशान हैं, अंग्रेजी इतनी खराब है हमें बिल्कुल नहीं पोसाती है। नहीं तो थोड़ी पढ़े करे कोचिंग वोचिंग पढ़ लो तुम तो काय को अपने यहाँ किताबें आ रही हैं आजकल। हम तो खूब अंग्रेजी। अरे का अंग्रेजी तुम है सबसे गुड रूम को बेडरूम की है तो अंग्रेजी बताओ। नहीं मतलब सबसे गुड रूम को बेडरूम हमें नहीं पोसानी है बेकार अंग्रेजी जा हमें नहीं पोसानी। अब एक दिन भाई का भाव कि हम चले जा रहे थे तो उनने कही कि हमारे लड़का को छींक आ गई। हम जा रहे गोटे गांव तक तो लड़का हमारा जैसे छींको तो भाई ने कही का कही आर यू सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। हमने कही कोल्ड ओल्ड नहीं आई एम सफरिंग फ्रॉम गोटे गांव। हाँ मतलब अंग्रेजी मतलब ये सुना बड़ी माने छीछा लेदर अंग्रेजी में समझ में नहीं आया अंग्रेजी मतलब। टाकीज को देखो स्पेलिंग देखी टाकीज की टी ए एल के आई पता नहीं टाल कीज के का हमको तो लगा टाल कह रहा है का कह रहा है लकड़ी को टाल माने बेजा बेकार अंग्रेजी। खैर साहब अंग्रेजी की बात चली शॉपकीपर से उन्होंने कहा बे हमने सुनी कि आप कहाँ हर ओकेजन की ग्रीटिंग मिलती। यस हर ओकेजन की मिलती है आपको कौन सी चाहिए देख लें थोड़ी। बेटा जाओ बेटा दिखाओ उनको ग्रीटिंग दिखाओ। देखिए मैडम यहाँ से लगी है एक लाइन से ग्रीटिंग लगी है सारी ओकेजन्स की ग्रीटिंग लगी है फेस्टिवल की बर्थडे की वैलेंटाइन की सिस्टर की ब्रदर की थैंक्स की यहाँ रिटायरमेंट की ना सारी ग्रीटिंग सॉरी वगैरह की ग्रीटिंग इस तरफ लगी सारी ग्रीटिंग लगी आप देख लीजिए। अब दोनों सहेलियाँ ग्रीटिंग देख रही जवाली ने जवाली ने वापस चलो कहीं कहा भैया हम लोग जा रहे हैं। क्यों क्या हो गया मैडम ऐसी खराब ग्रीटिंग लगाई जब तो हम कहे कि मौड़ियाँ बिगाड़ कर आए। भाई उन्हें सीक्रेट में पान वाले लाल लाल उसमें से तीर कमान चल रहा है। हमने कहा देखो जब यह सब पूरा लफड़ा हो रहा हो या ग्रीटिंग के कारण यह हो रहा हो। एक ग्रीटिंग हमने देखी कि ग्रीटिंग में छह सात ठैया ऐसे छोटे छोटे गोरे गोरे ऐसे गोल गोला खाएंगा ऐसे लड़का बच्चे ऐसे बैठे छोटे छोटे पुंतरिया पहने ऐसे गजब देख रहा है। मैंने कही जवाली ले लगा कहने लगे ले तो ले हो लेकिन ऐसे लड़का बच्चा कितने साल छह आठ साल को कहा रहन दो तुम तो। कहने लगे फिर साहब फिर उन्हें ग्रीटिंग व्रीटिंग दी नहीं हाँ भैया हमें समझ में नहीं आ रही हम आए ओकेजन ग्रीटिंग। मैडम आपको किस ओकेजन की ग्रीटिंग चाहिए हमारी कंपनी तो सारे ओकेजन की ग्रीटिंग बनाती है मतलब ऐसा कोई ओकेजन नहीं है जिसके लिए हमारी कंपनी ग्रीटिंग नहीं बनाती हो। अरे काहे की ओकेजन हमारे काम की है ही नहीं है। क्यों आपको कौन सी ग्रीटिंग चाहिए वो वाली है कौन सी हर छठ की है। नहीं बोले वो हर छठ की तो नहीं तो तीजा की नहीं तीजा की नहीं अच्छा वो संतान साथ हैं महालक्ष्मी अरे दिव्य तो है नहीं अच्छा वो वाली ग्रीटिंग है कौन सी खूब चल रहा हुआ आजकल त्योहार और अगर मैया परमेश्वरी की पूजा कर लो सो ऐसी प्रसन्न हो जात खूब धन धान घर में सुख वैभव समृद्धि मतलब ऐसी झमाझम हो जात मैया कृपा हो जाए बवाली है कौन सी वैभव लक्ष्मी की है। नहीं बोले ऐसी ग्रीटिंग तो नहीं अच्छा माने सुख की नहीं है ग्रीटिंग नहीं नहीं ऐसा नहीं है मतलब और है और कौन चाहिए अच्छा बवाली है दुख की कौन सी मैं हमारे मतलब ससुर को लड़का मतलब देहांत हो गया तेरा की है। नहीं बोले ऐसी ग्रीटिंग तो नहीं है तो ऐसी तो नहीं अच्छा खारी वाली नहीं बोले ऐसी ग्रीटिंग तो कंपनी ने नहीं बनाई जी तो हम और ओकेजन है अच्छा एक ओकेजन हम लोग महिलाओं को इतने इम्पोर्टेंट है वो वाली हु है। बोलिए मैडम कोशिश करेंगे वैसे आपकी जो चॉइस है वो अलग हटके है आप बताइए कौन सी मतलब इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया के अंदर मतलब समझ लो जितनी हमारी महिलाएं शादी ब्याह हो जाए ओके बाद मान लो लड़का बच्चा नहीं हो रहे तो और कोई मतलब तबीयत खराब है तो मतलब भगवती की ऐसी महिमा आपने बदना बदी कि हमारा जो काम हो जाओ काम पक्को हुए 100% हुए काम वो ग्रीटिंग ऐसी काम की है। कौन सी ग्रीटिंग सुहागलों की ग्रीटिंग है। नहीं बोले ऐसी ग्रीटिंग तो नहीं है कहा जी तो हम और क्यों किए जान तुम्हारे पास यही ग्रीटिंग नहीं है वो वाली है कौन सी बहन जी वो फलेरा की है।

ग्रीटिंग है ही नहीं है तुम्हारे पास, क्या आधार हो कि इनकी ग्रीटिंग है? तो हमें तो नहीं जा रही, तुम देख लो। तो बाजी वाली ने देखा, जा वाली नहीं, हमें भी नहीं समझ में आ रही, जब इनको नहीं मिली हमें कहाँ मिले। हाँ बोलिए, हो सकता है आपकी मिल जाए ग्रीटिंग, आपको कौन सी चाहिए? नहीं मिलेगी, नहीं मुश्किल लग रहा है, वैसे देख लीजिए आप, वो वाली है क्या? कौन सी? करवा चौथ की है। नहीं मैडम, आई एम वेरी सॉरी, हार्डली सॉरी, लेकिन ये सारी ग्रीटिंग्स नहीं है, मैं कंपनी को रिकमेंड करूंगा। नहीं, अगर करवा चौथ की होती ना, हाँ तो मैडम 6 ठैया ले लेते। मैडम वैसे है तो नहीं, लेकिन अगर होती तो आप 6 ले लेती हैं, वो तो एक सफिशियंट, एक पर्याप्त है। कौन के लाने? उनके लाने। हाँ, अरे उन्हें कहा ग्रीटिंग देना? क्यों क्यों क्यों भाई? अरे वे तो ड्यूटी से आए, डब्बा धरो अपने गए तो खाए पिए अपने टन पड़े। उन्हें कहा ग्रीटिंग, फिर 6 का करेंगी आप? फिर नहीं, 6 को ऐसो है, 4 ठैया मायके में, 2 सामने अपार्ट में। अच्छा जी बताओ कि आपकी दुकान में और का दूसरी चीजें ले लो, कोई ग्रीटिंग के पीछे पड़ी तो मवा आई होती, दूर कछु तो ले लो। हाँ देख लो कछु कछु जी। भैया जी मग्घा धरे कप? हाँ बहन जी ये कप हैं, चाय पीने के हैं, चाय पी लीजिए, इसमें कॉफी पी लीजिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लीजिए, ये बहुत बढ़िया कप है। नहीं तो जी वो वाले कप नहीं है। कौन सा कप? वो वर्ल्ड कप नहीं है? नहीं बोले, नहीं बोले वर्ल्ड कप तो हम लोग नहीं बेच, नहीं मतलब हम आई, मतलब मालकिन कह रही थी कि हम आए हुए गए वर्ल्ड कप में, तो अब ये तो का मालूम लाए नहीं लाए, अपन 2-4 खरीद ले चले। अच्छा एक बात बताओ जी, हम तो पढ़े लिखे, तुम देखो जी अंग्रेजी में कपों में कछु कछु लिखो। अच्छा भैया जी कप को साइज कछु बड़ो नहीं? नहीं देखिए ये बच्चों के भी कप, बच्चों के वो बहुत छोटे छोटे से, ये बड़े कप है, इनमें लिखा है मतलब हार्ट और मतलब आई लव यू लिखा है, किसी में फ्रेंड लिखा है, सिस्टर लिखा है, ये सबके लिए अलग अलग है कप क्या? हाँ ये सबके लिए अलग अलग कप है, जैसे जिसका बर्थडे है उसको आप गिफ्ट कर सकते हैं, और मतलब अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग कप है। अच्छा अच्छा मतलब हर ओकेजन के लिए आजकल कप भी आ गए। अच्छा वो वाला कप नहीं है? कौन सा कप? जब मतलब हार के आएंगे तो उसी में चाय देंगे। नहीं ऐसा तो कप नहीं है।

0: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से, के अंतर्गत धारावाहिक हंसना मना है की तीसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 से 11 जुलाई तक इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा करेंगे। वे पहले इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सुवियांतो से मुलाकात करेंगे। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री एंथोनी अल्वानीज के साथ द्विपक्षीय वार्ता और सीईओ फोरम में सम्मिलित होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। राज्य सरकार ने 9 आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी कर दिए हैं। रुचिवर्धन मिश्रा को आईजी ग्रामीण जोन भोपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रदेश के इच्छुक मुस्लिम समुदाय के लोग इसमें निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया जारी है। इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑफलाइन ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भारत भवन में आज से गायन पर्व की शुरुआत हो रही है। शाम 7 बजे से

0: शुरू होने वाले इस पर्व में आस्था गोस्वामी और रुचिका केदार की जुगलबंदी रहेगी। प्रदेश के 19 जिलों में आज अति भारी या भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने बड़वानी और खंडवा में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। पहला मैच चेस्टरले स्ट्रीट में बारिश के कारण रद्द कर दिया गया था। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दिन के 1 बजे हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम।

नारी शक्ति राष्ट्र की प्रगति, नारी का सम्मान देश का अभिमान, शिक्षित नारी उन्नत समाज की पहचान। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी बहन स्मृति और मैं लेकर आई हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा, जिसमें होंगी ढेरों बातें और संगीत। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कार्यक्रम महिला सभा। बहनों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि नारी शक्ति देश की प्रगति, तो नारी शक्ति निश्चय ही वह शक्ति है जिससे हमारा घर ही नहीं, हमारा देश, समाज, राष्ट्र प्रगतिवान है। और आज की नारी ही नहीं, इतिहास के पन्ने पलटिए, आपको पता लगेगा नारी ने इस देश की आन बान और शान के लिए अपना कितना लहू बहाया है और संघर्ष किया है। भारत की नारी अबला नहीं, शक्ति है, अखंड भारत की। हमारी सरकार नारी की शक्ति एवं महत्ता को जानती है, इसीलिए नारी के हित में अनेकों योजनाएं चलाती हैं, जैसे लखपति दीदी, जिसके अंतर्गत स्वसहायता समूह चलाकर महिलाओं में प्रशिक्षण, कौशल विकास और स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसमें महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री वंदना योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और निवेशक दीदी योजना। तो बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं निवेशक दीदी योजना के बारे में। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि निवेशक दीदी कैसी योजना है। तो भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य महिलाओं को निवेश और वित्तीय सहायता के बारे में जागरूक करना। यह पहल महिलाओं को बचत, निवेश और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित करती है। निवेशक दीदी का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सही जानकारी देना होता है। बैंकिंग, बीमा, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य वित्तीय विकल्पों के बारे में समझना, धोखाधड़ी और फर्जी निवेश योजनाओं से बचने के तरीके बताना एवं महिलाओं को अपने पैसे का सही प्रबंध करना सिखाया जाता है। अब आइए जानते हैं निवेशक दीदी क्या करती है। तो निवेशक दीदी गांवों एवं शहरों में जागरूक कार्यक्रम आयोजित करती है, महिलाओं को सुरक्षित निवेश प्रदान करती है। निवेशक दीदी वित्तीय सहायता को बढ़ावा देने वाली एक अनूठी पहल है, जिसे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को जागरूक और सशक्त बनाना है। साथ ही विभिन्न प्रकार के वित्तीय धोखाधड़ी, घोटालों, फर्जी स्कीमों और साइबर फ्रॉड जैसे ओटीपी शेयर ना करना के प्रति सावधान करती है। इस पहल में महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा ही कार्य किया जाता है, क्योंकि ग्रामीण

0: श्रोताओं, जैसे कि मौसम परिवर्तन हो रहा है तो बदलते मौसम में हमें कुछ सावधानियां रखनी चाहिए ताकि बदलते मौसम का हमारे स्वास्थ्य पर असर ना पड़े। साथ ही बच्चों में भी रखरखाव के लिए हम लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता, जिसमें बात कर रही हैं शिक्षिका श्रीमती माया श्रीवास्तव।
1: माया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। माया जी, जैसे कि मौसम में बदलाव हो रहा है, बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, जिसमें पानी के परिवर्तन के कारण छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमारे जल एवं वायु में घुल जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य पर उसका गहरा असर होता है, तो मौसम परिवर्तन होने पर क्या करें, आप जरा हमको बतलाइए।
2: मौसम परिवर्तन होने पर सब जो पानी आता है नल में, बिल्कुल भी दूषित रहता है, इसलिए बच्चों को या बड़ों को भी सभी को पानी उबाल करके पीना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: जब तक बरसात रहती है तब तक पानी उबाल करके पिए, और बाहर का जो खान पान है वो भी दूषित रहता है, उससे बचाव करना चाहिए।

0: बिल्कुल
1: घर में ताजा भोजन और हवादार घर में रहना चाहिए। पत्नी बच्चे बाहर का खाते पीते हैं, उससे उन्हें समझाना चाहिए कि बाहर का खाना पीना बंद करें, ताजा भोजन करें।
0: यानी कि आपका कहना है कि ये बदलते मौसम का बच्चों पर खास असर होता है, शायद उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती
1: है। कम रहती है, बिल्कुल कम हो जाती है बच्चों की, और बच्चे जल्दी बीमार पड़ते हैं। अक्सर बच्चे भीग जाते हैं, भीगने के बाद में भी स्कूल में मान लीजिए बैठे हैं या स्कूल से आते समय ही बच्चे भीग जाते हैं, तो बच्चों को तुरंत उनके कपड़े, गीले कपड़े तो बिल्कुल बच्चे ना पहने। कई बार बच्चे गीले मोजे पहने बैठे रहते हैं तो उनका भी बच्चों के पैर से इंफेक्शन बढ़ता है और बीमारियां शुरू हो जाती है। सर्दी खांसी बहुत जल्दी पकड़ती है बच्चों को, इम्यूनिटी बहुत कमजोर रहता है बच्चों का, तो बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। बरसात में उनकी देख रेख करना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल माया जी, क्या घर के आसपास की साफ सफाई भी आवश्यक है?
1: बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि बरसात में कीड़े मकोड़े इतनी जल्दी पनपते हैं कि घर का जो अगर आसपास कचरा पड़ा है, गंदगी फैली हुई है, तो उसका दुष्प्रभाव घर के पास ही आती, बदबू आती है, कीड़े मकोड़े आसपास फैलते हैं, उससे भी बीमारियां फैलती हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आसपास की सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए। कपूर का जला के रखें तो उससे भी मलेरिया मच्छर नहीं आते हैं अंदर।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो बहनों, अभी हमने सुनी यह भेंट वार्ता जिसमें बात कर रही थी शिक्षिका श्रीमती माया श्रीवास्तव। श्रोताओं, जैसा कि मैंने अभी नारी शक्ति पर बात की थी कि किस तरह नारी हमारे देश के हित में कार्य करती है, अब इसी कड़ी में जानते हैं भारत की पहली महिला वकील, समाज सुधारक और लेखिका, जिनका नाम है कार्नेलिया सोराब जी। इन्होंने उस समय पर इतिहास रचा था जब महिलाओं को कानून की पढ़ाई एवं वकालत के लिए बहुत कम अवसर मिलते थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1866 को महाराष्ट्र के नासिक में हुआ था। वे बॉम्बे विश्वविद्यालय से स्नातक करने वाली पहली भारतीय महिला थी। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई करने वाली पहली महिला बनी। भारत लौटने के बाद उन्होंने अनाथ बच्चों एवं महिलाओं के लिए कानूनी सहायता दिलाने के लिए वर्षों तक कार्य किया। लगभग 600 से अधिक बच्चों एवं महिलाओं को कानूनी सहायता प्राप्त कराई, जिनसे उन्होंने कोई भी शुल्क नहीं लिया। 1923 में महिलाओं को भारत में वकालत करने की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने आधिकारिक रूप से वकालत शुरू की और भारत की पहली महिला अधिवक्ता में अग्रणी रही। कार्नेलिया सोराब जी ने महिलाओं की शिक्षा और उनके कानूनी अधिकारों के लिए कार्य किया। कई सामाजिक संगठनों से जुड़कर महिला कल्याण के लिए भी अभियान चलाए। उनका मानना था कि महिलाओं में शिक्षा समाज में स्थायी परिवर्तन की सबसे बड़ी कुंजी है। जैसे कि कार्नेलिया सोराब जी लेखिका भी थी, तो उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी थी। कार्नेलिया ने अपने जीवन में संघर्ष, दया, उपकार और परसेवा को चुना, जिससे लोग हमेशा याद रखेंगे पहली महिला वकील को। और 6 जुलाई 1954 को लंदन में उन्होंने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। कार्नेलिया सोराब जी भारतीय इतिहास की साहसी, शिक्षित और प्रेरणादायक महिला बनी। उन्होंने कठिन सामाजिक परिस्थितियों में भी महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और महिला वकालत की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो श्रोताओं, इसी के साथ सुने एक और गीत, जिसे एक बार फिर से आवाज दी है लता मंगेशकर ने।

तो अभी हमने सुना यह गीत जिसे आवाज दी थी लता मंगेशकर ने। बहनों, जैसा कि बरसात का मौसम शुरू हो गया है,

बहनों, जैसा कि बरसात का मौसम शुरू हो रहा है, ऐसे में हमारी त्वचा को बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। तो क्या करें कि इस मौसम में भी हमारी त्वचा दमकती रहे, इसके लिए जानते हैं कुछ उपाय। पहला है, हल्के फेस वॉश से दिन में 2 बार सुबह और शाम को चेहरा धोएं, ताकि चेहरे का तैलीयपन और धूल हट जाए। त्वचा को मॉइस्चराइज करें, इस मौसम में भी नमी की आवश्यकता होती है, तो ऑयली मॉइस्चराइजर को हटाकर साधारण मॉइस्चराइजर को यूज करें। जब भी घर से बाहर निकले सनस्क्रीन जरूर लगाएं, बल्कि बादल होने पर भी यूवी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए बरसात में भी बादल होने पर घर से बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन लगाएं। त्वचा को सूखा लें, यानी अगर बारिश में भीग गए हों तो घर पहुंचकर शरीर को, चेहरे को अच्छी तरह से सुखाएं। साथ ही भारी मेकअप ना करें, हल्के एवं वाटरप्रूफ उत्पादों का इस्तेमाल करें जिनसे रोम छिद्र बंद नहीं होंगे। जरूरी और सबसे जरूरी है, जो हमारे स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए आवश्यक है, वो है भरपूर नींद और पर्याप्त पानी। जी हाँ, यह दोनों हमारी त्वचा को प्राकृतिक चमक प्रदान करते हैं। तो श्रोताओं, चलते चलते सुनते हैं एक और गीत, जिसे आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने।

श्रोताओं, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक दीजिए अपनी बहन स्मृति को इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है।
1: सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
3: क्या
2: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
3: वो कैसे?
2: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
3: पर सुनेंगे कैसे?
2: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
4: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम लोक संगीत। आज इसके अंतर्गत आप सुनेंगे पद्मधर झा के गाए लोकगीत। तो लीजिए कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए लोक भजन पद्मधर झा के स्वर में।

पद्मधर झा के स्वर में अभी आपने सुना दादरा। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। लोक संगीत में लीजिए अब सुनिए झूला गीत पद्मधर झा के स्वर में।

झूला गीत अभी आपने सुना पद्मधर झा के स्वर में। इसी के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति था।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। दिन के 1:45 हुए हैं। प्रस्तुत है आकाशवाणी रीवा की प्रस्तुति कार्यक्रम सुगम संगीत।

0: रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।
1: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
2: क्या?
1: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है।
2: वो कैसे?
1: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: पर सुनेंगे कैसे?
1: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर।

0: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
1: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर।
1: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
0: अरे तनिष्का, कहाँ थी इतने दिनों से?
1: अरे राधिका, मैं गई थी कुल्लू मनाली।
0: तो क्या क्या किया कुल्लू मनाली में? मजा आया कि नहीं?
1: अरे काहे का मजा।
0: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे मैंने वहाँ आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर को बहुत मिस किया।
0: अरे इसमें मिस करने वाली क्या बात है, अब तो आकाशवाणी और विविध भारती इंदौर मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है, तुम्हें नहीं पता?
1: ऐसा क्या, तो अब मैं जब भी बाहर जाऊंगी मोबाइल ऐप के जरिए आकाशवाणी ऐप से जुड़ी रहूंगी।
0: ये हुई ना बात।

इशक ज़ादे इस फिल्म का गीत सुनिए, जावेद अली और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। गीत लिखा है कौसर मुनीर ने और इसे

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: से सुसज्जित नए टर्मिनल भवन से यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इससे क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और रोजगार सृजन को बढ़ावा भी मिलेगा। आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सहकार से प्रेरित सहकारिता किसानों, महिलाओं और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है। वहीं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता भारत की संस्कृति, सामूहिक शक्ति और आत्मनिर्भरता की नींव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र ने नई गति प्राप्त की है और इसका उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन आज देश के विकास की प्रमुख धारा बना हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। श्री कुमार आज इंदौर में आयोजित बूथ लेवल अधिकारियों के सम्मेलन में इंदौर, उज्जैन, देवास, धार और खंडवा जिले के 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कल ओंकारेश्वर और महेश्वर के धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीय चेतना को वैश्विक मान्यता दिलाने में स्वामी विवेकानंद का योगदान अतुलनीय है। श्री मोदी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की बुद्धि और प्रेरणादायक विचार लाखों युवाओं का मार्गदर्शन करते रहेंगे और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाएं विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में देश को नई दिशा प्रदान करती रहेगी। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि संशोधित खरीद मूल्य आज से प्रभावी हो गया है। मंत्रालय के अनुसार इससे प्याज किसानों को बेहतर लाभ मिलेगा और साथ ही बफर खरीद प्रयासों में भी सहायता मिलेगी। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हरदा में नर्मदापुरम खंडवा स्टेट हाईवे बंद हो गया है, जबकि खंडवा, सीहोर और उज्जैन समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। बड़वानी और खंडवा जिले सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं, जहां रेड अलर्ट घोषित किया गया। मौसम विभाग ने रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, खरगोन, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट जिलों में अति भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं इंदौर, देवास, सीहोर, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर और पाडुना जिलों में भारी वर्षा होने का अनुमान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में खेत बचाओ अभियान के तहत किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई। झाबुआ में स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कलेक्टर कार्यालय परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। सतना में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और जनप्रतिनिधि से सीधे संवाद को सशक्त बनाने में आज सांसद गणेश सिंह ने सांसद सुविधा केंद्र के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू। दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 4 दिनों में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ेगा। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बालोतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पेट्रोकेमिकल्स, शहरी परिवहन, रेलवे, सड़क, नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत पारेषण सहित कई क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री ने बालोतरा के पचपदरा में भारत का पहला ग्रीन फील्ड एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित किया। ये देश के ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम है। प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये रिफाइनरी हजारों लोगों के लिए रोजगार का माध्यम बनेगी।
1: आज इस रिफाइनरी को देश को समर्पित किया गया है। ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। मैं राजस्थान के युवाओं को इस रिफाइनरी की विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। आज का दिन साक्षी है कि बीजेपी सरकारें परियोजनाओं को सिर्फ शिलान्यास करके नहीं छोड़ती है, बल्कि हम उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी दिन रात एक कर देते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल लागत वाली जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी शिलान्यास किया। दूसरे चरण में प्रहलादपुरा से तोड़ी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने चुरू सादुलपुर और चुरू रतनगढ़ रेल दोहरीकरण परियोजनाओं और राष्ट्रीय राजमार्ग 125A जोधपुर रिंग रोड खंड 2 के 4 लेन निर्माण को भी राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना भी राष्ट्र को समर्पित की। श्री मोदी ने राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र REZ से बिजली निकासी के लिए 1,900 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित पारेषण लाइन का उद्घाटन किया। उन्होंने REZ के लिए 530 किलोमीटर लंबी बिजली पारेषण प्रणाली की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में भर्ती किए गए लगभग 54,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये नया टर्मिनल भवन प्रतिवर्ष 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। श्री मोदी ने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के नागर विमानन परिदृश्य में इस महत्वपूर्ण योजना से उड़े देश का आम नागरिक पहल को बल मिलेगा।
1: जोधपुर से ही आज उड़ान योजना के नए चरण की भी शुरुआत हुई है। इसके तहत छोटे छोटे शहरों और दूर दराज के क्षेत्रों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही अब जयपुर में मेट्रो का विस्तार भी होने जा रहा है।
0: प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात जाएंगे, जहां वे साणंद में CG सेमी आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट सुविधा का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर प्लांट का दौरा करेंगे और यहां की अत्याधुनिक क्लीन रूम सुविधा का निरीक्षण करेंगे। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहेंगे। वर्तमान में इस प्लांट में 300 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और आने वाले 5 सालों में यहां 5,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है, जिससे इस पूरे क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: गुजरात में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं

0: की समीक्षा के बाद अहमदाबाद में संवाददाताओं से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्वास जताया कि अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ने वाला पूरा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर 2029 के अंत तक तैयार हो जाएगा। उन्होंने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।
1: बुलेट ट्रेन का कंस्ट्रक्शन भी बहुत तेजी से चल रहा है और अगले साल सूरत से बिलीमोरा का पहला सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से सूरत का सेक्शन आरंभ करेंगे, उसके बाद में वापिस से अहमदाबाद का पूरा कंप्लीट करेंगे, फिर अहमदाबाद से ठाणे और उसके बाद में अहमदाबाद से मुंबई। इस तरह से सेक्शन बाय सेक्शन, फेज बाय फेज 2029 के एंड तक कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। बहुत 80% काम गुजरात के क्षेत्र में कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान स्थित 23 व्यक्तियों को गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकवादी घोषित किया है। ये लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और अन्य संगठनों से जुड़े हुए थे। मंत्रालय ने कहा कि देश और नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार हर आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। एक रिपोर्ट।
2: गृह मंत्रालय द्वारा आज घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में से 17 पाकिस्तान के जबकि 6 भारतीय नागरिक हैं। इस समय ये सभी नामित आतंकवादी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी आतंकवादी गतिविधि चला रहे हैं। ये आतंकवादी भारत विरोधी गतिविधियों, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों की मदद, धन जुटाने और आतंकियों की भर्ती जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। इन व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किए जाने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA इनकी आर्थिक गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगी, हथियारों की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध और उनकी संपत्तियां जब्त कर सकेंगी। वर्ष 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम में संशोधन लागू होने के बाद से केंद्र सरकार अब तक 80 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित कर चुकी है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: व्यापक पायरेसी की खबरों को देखते हुए सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी किया है। सरकार ने टेलीग्राम को पायरेटेड फिल्मों और OTT कंटेंट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्लेटफॉर्म को 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है। इस कदम का उद्देश्य भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था, फिल्म उद्योग, प्रसारकों, OTT प्लेटफॉर्म निर्माताओं और वितरकों की रक्षा करना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि खिलौनों के आयात में भारी गिरावट आई है और घरेलू खिलौना बाजार में देश में ही बने उत्पादों की हिस्सेदारी बढ़ गई है। नई दिल्ली में आयोजित 17वें टॉय बिज इंटरनेशनल B2B एक्सपो को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारतीय खिलौना निर्माता राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि भारत का खिलौना उद्योग जमीनी स्तर पर रचनात्मकता, नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र देश की लोकल से ग्लोबल पहल का एक सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया के अंतर्गत गणना प्रपत्र जमा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी पात्र मतदाताओं से इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता BIA आज से लागू हो गया है। इस समझौते पर पिछले वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह समझौता द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सुरक्षित तथा निवेश का अनुमानित वातावरण सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मंत्रालय ने बताया कि BIA से सीमा पार निवेश गतिविधियों में वृद्धि होने और भारत तथा इसराइल के बीच आर्थिक साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में भारतीय सेना की एक विशेष चिकित्सा टुकड़ी तैनात की है। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने आज भूकंप प्रभावित लोगों के इलाज के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत स्थापित भारतीय सैन्य फील्ड अस्पताल का दौरा किया। ये अस्पताल वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने पर केकी फुखिमोरी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत पेरू के साथ अपनी घनिष्ठ मित्रता को बहुत महत्व देता है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला सैयद अली खामनेई को तेहरान में सुपुर्दे खाक करने के 6 दिन के राजकीय कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। ईरान के वरिष्ठ नेताओं, सैन्य कमांडरों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों ने तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में आयतुल्ला अली खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। समाचार सेवा प्रभाग विशेष श्रृंखला में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत देवेंद्र सूरा के साथ परिचर्चा प्रस्तुत कर रहा है।
3: चंडीगढ़ शहर अगर सुंदर है तो पेड़ पौधों की वजह से है, तो मेरे मन में आया क्यों ना इस प्लान से हम भारत के हर गांव को हरा भरा बनाएं। मातृशक्ति ने वहां के जो भी सम्मानित या जितनी प्रिंसिपल सभी ने भागीदारी दिखाई। अब भाई बेटी के नाम के आगे ऊपर लिखना है माता का नाम। जनता नर्सरी बनाई है, उसमें फ्री में पेड़ दिए जाते हैं। ये कार्य तो अभी शुरू हुआ है, अंतिम सांस तक इस अभियान को मतलब एक बड़ी खुशी से और समर्पित भाव से चलता रहेगा।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये परिचर्चा आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित की जाएगी। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। इसका पुनः प्रसारण कल सुबह 10:30 भी होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। महाराष्ट्र से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
5: मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और सातारा, पुणे व नासिक के घाट इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और पालघर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ रहा है और अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। मुंबई शहर और आसपास के इलाकों में आज लगातार 5वें दिन जोरदार बारिश जारी है। बारिश की वजह से स्कूलों और कॉलेजों में दोपहर की क्लास के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई है। नगर निगम ने लोगों से अपील की है कि वे तभी घर से बाहर निकले जब बहुत जरूरी हो। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
6: क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय समय के अनुसार मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला का पहला मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। फीफा विश्व कप में कोलंबिया ने घाना को 1-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। अब अगले दौर में उसका मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। वहीं मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने अतिरिक्त समय तक चले रोमांचक मुकाबले में कार्बो वर्डे को 3-2 से हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है। अर्जेंटीना के लिए लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट का अपना 7वां गोल किया।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बालोतरा में भारत का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर देश को समर्पित किया। उन्होंने जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत पाकिस्तान स्थित 23 लोगों को आतंकवादी घोषित किया। सरकार ने बड़े पैमाने पर पायरेसी की रिपोर्ट मिलने के बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट देने को कहा। भारत और इसराइल के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता आज से लागू और भारत इंग्लैंड के बीच दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है आपके मनपसंद गीतों से सजा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम में हमें पत्र लिखा है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। साथ ही ग्राम संदलपुर ग्वालियर से कालीचरण यादव, दीपक कुमार यादव, चांदनी यादव और उर्मिला यादव ने

आप सभी ने सुनना चाहा है फिल्म सिलसिला का गीत, जिसे आवाज़ें दी है लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन ने। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और इसे संगीतबद्ध किया है शिव हरी ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म सिलसिला का ये गीत।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है उधर भी।

संतोष आनंद का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा हुआ गीत, जिसे आवाजें दी है लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों ने। फिल्म का नाम है रोटी कपड़ा और मकान। इसे सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है कवर कॉलोनी बड़वाह से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति, शिवानी श्रीमाली और मीनू राज श्रीमाली ने। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म रोटी कपड़ा और मकान का ये गीत।

इस समय आप आनंद ले रहे हैं अपने मनपसंद गीतों का और कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। राजा जी कॉम्प्लेक्स नई सड़क शाजापुर से एमएम राजावत, मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन उमेश, सरोज आरती, रेखा, रितिका, रिचा, स्वीटी सागर, रिया, रीत और ऋषभ राजावत। आप सभी ने सुना चाहा है फिल्म लिबास का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत गुलजार का है और संगीत है आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आखिरी गीत फिल्म इजाजत से। आवाज़ आशा भोसले की है, गीत गुलजार का, संगीत आर डी बर्मन का और पसंद आप सभी श्रोताओं की। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झागवेंद्र कुमार वर्मा की। साथ ही इसी गीत को सुनना चाह है ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ज्योति और रियांश ठाकुर ने।

0: इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: आज अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारिता आंदोलन आज देश के विकास की मुख्य धारा बना हुआ है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रदेश के दो दिन के दौरे पर हैं। श्री कुमार आज इंदौर में आयोजित सम्मेलन में 1500 से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने स्वामी विवेकानंद जी को एक महान देशभक्त और दार्शनिक बताया। केंद्र सरकार ने मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए प्याज के खरीद मूल्य में 13% की बढ़ोतरी की है। इसका खरीद मूल्य 1875 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर अब 2125 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। भारत भवन में आज से गायन पर्व की शुरुआत हो रही है। शाम 7 बजे से शुरू होने वाले इस पर्व में आस्था गोस्वामी और रुचिका केदार की जुगलबंदी रहेगी। प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों में जनजीवन प्रभावित हो गया है। नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। हरदा में नर्मदापुरम खंडवा स्टेट हाईवे बंद हो गया है, जबकि खंडवा सीहोर और उज्जैन समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का दूसरा मैच आज मैनचेस्टर में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर हमारी ये प्रसारण सभा समाप्त करने से पहले श्रोताओं, हम आपको बता दें, हमारी सांध्यकालीन प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र की प्रस्तुति है।

आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति कार्यक्रम ग्राम सभा आप सुनेंगे शाम 7:21 पर। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे शाम 7:45 पर। रात 8 सुनिएगा सुर्खियों में पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इसकी 8 आप सुनेंगे रात 8:15 पर। साहित्य भारती ये आप सुनेंगे रात 9:30 पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:00। आज इसके अंतर्गत सुनिएगा पंडित अर्णब चट्टोपाध्याय का ख्याल गायन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। ये थी जानकारी हमारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर अर्थात 1593 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेव ओटीटी ऐप पर हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं।